ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो विद स्टार 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर घर घर की आवाज रेडियो विद स्टार। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: करने वास्ता मारे साथ जुड़ रही आ गांव की बेटी। राम राम जी।
1: राम राम जी।
0: और ठीक ठाक है बहन?
1: हाँ जी, ठीक हो? आप बताओ कैसे हो?
0: बढ़िया जी, हम भी। तो दीदी, सबसे पहला श्रोतावां नु अपना परिचय दो।
1: हाँ जी, मैं कुसुम गौर सी, जो बिलासपुर से बिलोंग करती हूँ।
0: ठीक है जी। तो दीदी, मैं आपसे यूं पूछना चाहूं भी, आप अपने परिवार में कितनी बेटियां हैं?
1: हम अपने परिवार में जो है 4 बेटियाँ।
0: तो जो चार हैं वे सारी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं?
1: हाँ जी, सब पढ़ी लिखी हैं, सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं।
0: ठीक है जी। तो आपके परिवार में बेटियां की कौन सी पीढ़ी चल रही है?
1: ये परिवार में 4थी पीढ़ी चल रही है। जो मेरे दादाजी थे, उनको 2 बहनें थी उनकी, और मेरे दादाजी के पास 4 बेटियां थी। आगे मेरे जो पिताजी हैं, उनके पास भी 4 बेटियां हैं, और मेरे ताऊ जी के पास 2 बेटियां हैं। मेरे एक भाई हैं, 2 भाई हैं, मतलब उनको भी एक एक बेटी है अभी।
0: तो दीदी, मैं आपसे यूं पूछना चाहूं भी, जिस तरह आप बेटियां हैं अपने घर में, तो बेटियां नू किस तरह सम्मान दिया गया परिवार में?
1: एक औरत के लिए जो सबसे बड़ा धन होता है, जो सबसे बड़ा गहना होता है, वो लड़की के लिए एजुकेशन है। तो मेरे परिवार ने ये हम सभी लड़कियों को दिया है।
0: जिस तरह आपने बताया अभी, परिवार में लड़के भी हैं, तो लड़का और लड़की के बीच में परिवार में कोई भेदभाव भी करा गया?
1: अभी जहाँ तक हमने देखा है, अपने घर में कोई भेदभाव नहीं हुआ किसी भी तरह का, ना किसी एजुकेशन को लेकर हुआ, ना किसी रीति रिवाज को लेकर हुआ। जैसे ही हम पढ़ने के लिए गए, किसी भी व्हीकल का हमने यूज़ किया, बाय बस बाय ऑटो, ऐसे ही घर में लड़के पढ़ने के लिए गए हैं। जैसे लड़कों की शादी हुई, तो ऐसे ही लड़कियों की शादियाँ हुई है। हाँ जी, अगर मैं रीति रिवाज की बात करूँ आपके साथ, तो घर में सभी तरह का जो है, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हुआ घर में, और जो है सभी ने बड़े अच्छे से प्यार किया है। और सभी की शादियां भी ऐसी हुई जैसे लड़कों की शादियां हुई, जैसे उनकी शादी के लिए घर में तैयारी हुई, ऐसी लड़की की शादी के लिए तैयारी हुई।
0: तो जिस तरह आप एक गांव में रहा, तो गांव में लड़कियां नु शिक्षित करने के प्रति क्या विचार रहा गांव वाले के?
1: अच्छा जी, ऐसे अपने अपने विचार होते हैं सभी फैमिलीज के और सभी फैमिली मेंबर्स के। तो मेरी जो फैमिली मेम्बर हैं, उनके कुछ अलग विचार हैं, लेकिन जो गांव के और लोग हैं मेरे टाइम के, मैंने देखा है, तो वो सभी जो लड़कियां हैं, वो अभी +2 तक ही पढ़ी हैं, उससे आगे नहीं वो पढ़ी।
0: तो इसका क्या कारण रहा अभी हम +2 त्याग नहीं पढ़ पाई?
1: इसका भी अपना अपना फैमिली कारण है, सभी का अलग अलग रीजन है। कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि जो लड़की को घर पढ़ाएंगे तो ये तो अगले घर चली जाएगी, इसके ऊपर पैसे क्यों खर्च करें। या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आसमां जैसा है, तो इसको जाने में परेशानी है। कुछ व्हीकल की समस्या भी रही थी उस टाइम पे, बसेस नहीं मिलती थी, तो इसके कारण भी लड़कियां नहीं पढ़ पाती थी। और भाई, फाइनेंशियल भी कमी रही है, कुछ पेरेंट्स फाइनेंशियल बहुत कमजोर थे, तो ये अलग अलग रीजन है इसके।
0: मैं आपसे यूँ पूछना चाहूंगी, आपने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त करी हुई है?
1: हाँ जी, मैंने MA कर रखी है, और मैं आर्या गर्ल्स कॉलेज जो अम्बाला कैंट का है, उसमें मैं पढ़ी हूँ। मैं कॉलेज की भी टॉपर रही हूँ, यूनिवर्सिटी की भी टॉपर रही हूँ। कॉलेज के जितने भी फंक्शंस होते थे, कॉलेज के अंदर होते थे, कॉलेज से बाहर होते थे अलग अलग कॉलेज में, तो मैं उनमें सभी में पार्ट करती थी। और मेरा स्कूल में, कॉलेज में एक बहुत अच्छा स्कोप रहा है, और मेरी एक अच्छी पहचान है सभी के बीच में। मेरे किसी भी स्टाफ से आप पूछ सकते हैं जाके, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बाय फेस जानते हैं, मुझे बाय नेम जानते हैं। कॉलेज में मैंने बड़ी अच्छी पहचान बनाई है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है। कई बार मैं, अभी तो मेरी शादी हो चुकी है, तो मैं कई बार अपनी फोटोज़ देखती हूँ पुरानी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये भी बहुत अच्छा टाइम था मेरे लिए।
0: तो एक लड़की होने के नाते शिक्षा में आपनों क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा? क्योंकि जिस तरह आपने बताया अभी, आप गोमा रहा थे, तो गोमा ते जाने में चाहे वह बसा की सर्विस या और भी समस्या, तो क्या क्या देखनी पड़ी आपनों?
1: समस्याएं तो काफ़ी हुई हमें रास्ते में जाते हुए। एक तो यहाँ पे बस नहीं मिलती थी, अगर एक बस हमारी निकल जाती थी 2 मिनट के अंदर अंदर, जैसे हम जा रहे हैं तो आगे बस निकल जाती है, तो पूरे 2 घंटे के बाद हमें बस मिलती थी। तो इसलिए हम पहले ही टाइम से चलते थे घर से, थोड़ा जल्दी बैठते थे, आधा घंटा भी बैठना पड़ता था हमें जाके। और बस की सबसे ज़्यादा समस्या रही थी। और दूसरा, फिर समाज में हम, जैसे हम पढ़ने के लिए जाती थी, तो हमें बहुत अच्छे से, बड़े अच्छे से चलना पड़ता था, क्योंकि हमें देख रहा था कोई, दूसरे लोग भी हमें देखते थे। अगर हमारे नेगेटिव रिजल्ट आते, तो 4 लड़कियां जो पढ़ना चाहती थी, उनके भी कदम रुक जाते। हमारे अच्छे रिजल्ट आए, अच्छा हमने पॉजिटिव व्यू दिया लोगों को, तो उससे लोगों के अंदर और अवेयर बढ़ी। लोगों ने सोचा कि हम भी अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे, जैसे कुसुम पढ़ी है, जैसे इनकी फैमिली में सभी लड़कियां पढ़ी लिखी है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपने समाज को कैसा बनाना है। तो हमने अच्छा बनाया है अपने समाज को, हमारी अच्छी व्यू है, गांव के लोग हमारी सभी रिस्पेक्ट करते हैं, हम गांव के सभी लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसा हमारे अंदर वो नहीं है कि हम बाहर पढ़ने लिखने के लिए जा रहे हैं। शिक्षा यही है जिसमें आप सभी की रिस्पेक्ट करें। सबसे ज्यादा तो अगर मैं बात करूँ आपके साथ बस की समस्या थी, मेरा जो गाँव से लेके कॉलेज की बात करें तो वो 40 किलोमीटर दूर पड़ता था। 40 किलोमीटर मैंने आना और 40 किलोमीटर मैंने जाना, बहुत डिफिकल्ट था, भीड़ इतनी ज्यादा थी, आप तो देख भी नहीं सकते उस बस की भीड़ को, इतना रश था उसके अंदर, इतनी बॉयज गर्ल्स सब थे उसके अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, वो बहुत बड़ी समस्या रही। मैंने कॉलेज में भी इसके लिए शिकायत की कि आप इसको करो, लड़कियों को फैसिलिटी देनी चाहिए कम से कम, बस की तो अच्छी सी फैसिलिटी देनी चाहिए ना सरकार को, बच्चों की लड़कियों की एजुकेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी धर्म का है किसी भी जाति का है, पढ़ाई के अंदर सरकार को बच्चों के पूरा एक्शन लेना चाहिए। वो जो समस्या आई है उसको देखकर बड़ा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता था, हमें वहां से भी कॉलेज से भी बड़ी जल्दी से निकलना पड़ता था कि हमारी बस ना आगे निकल जाए, बहुत टेंशन रहती थी बस की।
0: बहुत बढ़िया विचार आपके। तो जिस तरह आपने बताया भी समस्या का भी सामना करना पड़ा, तो इस टाइप से ही समाज में और भी बहुत कुरीतियां फैल रही, जिस तरह दहेज प्रथा हो गया, और तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं?
1: हाँ जी, जैसे देश में एजुकेशन स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आजकल तो लड़कियाँ काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, उसी के साथ साथ एक चीज़ और आती है समाज के अंदर जो कि है दहेज प्रथा। जितनी जितनी लड़कियाँ पढ़ी लिखी हो रही है, दहेज प्रथा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग इसको कम नहीं कर रहे, ये कम करना चाहिए। जब हमें पढ़ा लिखा बच्चा मिल रहा है, अच्छे परिवार से हमें बच्चा मिल रहा है, तो आप ऐसी शादी करें। अभी मेरी शादी हुई थी 2021 में, 9 दिसंबर को 2021 में हुई मेरी शादी, तो मेरी शादी 1 रुपए की हुई थी, तो उसमें क्या लिया था मेरे घर वालों से, सिर्फ 1 रुपए का नोट और एक नारियल लिया था, और बड़ी अच्छी शादी हुई थी जिसमें हमारे काफ़ी सारे मंत्री भी आ रहे थे मेरी शादी में, जो हरियाणा के है HSSC मेंबर। तो मेरी शादी ना 1 रुपया और नारियल लेकर हुई थी, तो लोगों ने समाज ने काफ़ी सराहा था इस बात को, और इसी शादी को देखते हुए फिर मेरे गांव में एक लड़की की और शादी हुई थी, उसकी भी 1 रुपये में ही शादी हुई थी, बड़े अच्छा लगा। मतलब माँ बाप को कोई चिंता नहीं है बेटी होने की, सिर्फ यही चिंता रहती है कि अभी बेटी हो गई है, फिर इसके लिए धन इकट्ठा करना है, इसको पढ़ाना है, इसकी शादी करनी है, ये टेंशन मतलब ना तो बच्चे की अच्छे से ग्रोथ होने देती है और ना पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी बड़ी टेंशन बन जाती है। तो मैं समाज को ये बात कहूँगी ना कि आप थोड़ा सा समझे इस बात को, पढ़े लिखे बच्चे ले।
0: बहुत बढ़िया विचार आपके, बहुत ही अच्छी सोच। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा किस्सा हो जब आपने दहेज प्रथा नु लेकर बहुत सोचा हो, या उसके बारे में बहुत विचार करया हो, या आपने ऐसा कुछ देखा हो भी हाँ दहेज प्रथा नु लेकर कितनी ज्यादा लोग टेंशन रख रहे या फिर उसके बारे में ज्यादा सोच रहे?
1: विषय तो देखो मेरे को, वैसे तो हम समाज को देख ही रहे हैं, हम भी जाते हैं शादियों में और देखते हैं कि ये कितना दे रहा है, तो जैसे कोई दे तो अपनी बेटी को रहा है, लेकिन दूसरे के लिए वो टेंशन बन रही है कि मेरे को भी कल ये सब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा में है, तो जब करना पड़ेगा तो उसके लिए काफ़ी सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे को भी अभी एक बेटी है मेरे पास भी, तो जैसे मैं हॉस्पिटल में थी तो किसी को दूसरी बेटी हुई वहाँ पे, किसी को तीसरी बेटी हुई, तो वो लोग यही सोच रहे थे, काफ़ी लोगों के आंखों में भी आंसू थे, वो इसी बात से थे आंसू उनकी आंखों में कि बेटी को, बेटी के लिए इतना कुछ जोड़ना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, काफ़ी सिरदर्दी हो जाती है, एक पेरेंट्स अकेला कुछ नहीं कर पाता उस टाइम। और फिर आजकल तो समाज देखो गाड़ियों के नाम बोलते हैं शादियों में कि हमें ये गाड़ी चाहिए, हमें इतना चाहिए, भाई जब आप अच्छी इनकम लेते हो, आपके घर में सारी चीज़ें हैं, तो फिर आप ये बात क्यों कहते हो कि हम तो गाड़ी भी बेटी वालों से इतनी बड़ी लेंगे, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जब आप पढ़े लिखे परिवारों में रिश्ते कर रहे हो, चाहे किसी की बेटी जा रही है, चाहे किसी के घर में कोई बहू आ रही है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब आपके पास अच्छा पैसा है तो आप बच्चा लो, अच्छी बेटी लो, आप अपनी बेटी भी किसी अच्छे परिवार में दो, ये क्या मतलब हुआ कि इतनी सोना जाएगा, इतना खाना पीना, हाँ चलो तो अपनी अपनी रिस्पेक्ट होती है, आप खाना पीना अच्छा बनाओ ताकि सभी टेंशन फ्री रहे। जो पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी तो किसान हैं, मेरे गांव में तो लगभग लोग किसान ही हैं, कोई ऐसा सरकारी नौकरी पे नहीं है, तो वो कर्जे में इसी वजह से बंधे हुए हैं लोग, क्यों? क्योंकि उन्होंने शादियों पे पैसा काफी खर्च किया है, वो कर्ज से अभी तक भी मुक्त नहीं हुए। अगर उनके पास सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई रह जाती है ना, तो फिर कर्जा तो होता ही नहीं, क्योंकि बच्चे अपनी अच्छी ग्रेजुएशन हासिल करते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो अपनी पढ़ाई का खर्चा अपने आप उठाने लग जाती है। ये जो खर्चा होता है, ये जो कर्ज होता है माँ बाप के ऊपर, ये सिर्फ एक शादियों को होता है। तो मैं तो समाज को यही बात कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ा लिखा बच्चा लो, आप इन चीज़ों में मत जाओ। ये तो चीज़ें हैं, इंसान कभी भी इनको कवर कर सकता है। ये तो कभी किसी के पास ज़्यादा हो जाती हैं, किसी के पास कम हो जाती है, तो टाइम के साथ बदलती रहती है। ये चीज़ें आप कितने दिन घर में संजो के रख लोगे? अगर एक गाड़ी लेते हो आप, एक गाड़ी कितने टाइम तक रख सकते हो? 10 साल तक रख लोगे, फिर दूसरी गाड़ी तो अपने आप ही लेनी पड़ेगी। अब लड़की थोड़ी ना दूसरी गाड़ी आपको दिलवाएगी। तो पहले आप अपने आप के ऊपर क्यों गलत बात लेकर आते हो कि मैंने ये गाड़ी लेनी है? अपने पैसे से कमाओ, अपनी बेटी बहू को पढ़ाओ, वो अच्छे पैरों पे खड़ी होगी, सारी चीजें अपने घर में अपने आप कर लेगी। तो ये समाज की मुझे अच्छी नहीं लगती बात बिल्कुल भी।
0: बहुत ही बढ़िया सोच और बहुत ही अच्छे विचार आपके बेटियां के प्रति भी। वैसे भी बेटियां नु पढ़ाना चाहिए, उन्हें लिखाना चाहिए, और जो ये समाज में कुरीतियां चल रही इनके प्रति भी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि दहेज एक ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ा। बहुत ही बढ़िया विचार।
1: ऐसे है नेहा जी, जैसे आप सभी देखते हो, देखो कितना अच्छा लगता है जब कोई बेटी प्राइम मिनिस्टर बनती है, और एयर होस्टेस बनती है, इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है। अपने आप इंसान का जो सिर है ना, वो गर्व से ऊंचा हो जाता है नेहा जी। इससे बड़ा अच्छा लगता है कि फलां की बेटी है, वो इतने ऊंचे दायरे। मेरी बेटी 6 महीने की, मैं बड़ी उम्मीदें करती हूँ। अब मुझे 1 रुपये की भी फिक्र नहीं कि मैंने इसको कैसे दहेज देना। मेरा सिर्फ जो एक टारगेट है कि इसको इसके पैरों पे खड़ा होना है, इसको अपने सपने पूरे करने हैं। अब अगर मैं ये सोचने लग जाऊं नेहा जी कि मेरे को तो इसकी शादी के लिए पैसे जोड़ के रखना है, तो मैं तो इसकी एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरा तो दिमाग में सारा दिन यही बात रहती कि ये जोड़ लूं, ये पैसा कर लूं, वो पैसा कर। मैं तो अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रही। मैं तो इसके लिए फिर टेंशन हो रही है कैसी एजुकेशन हासिल करेगी, क्योंकि इसके दिमाग में तो यही बातें नोटिस में जा रही हैं कि मेरे मम्मी पापा तो इतने डिप्रेशन में है मेरी वजह से। हमने बेटा बच्ची हुई है हमारे घर में, भी खुश होना है कि एक परिवार मेंबर आया है हमारे घर के अंदर। हम बेटी को ले लेते हैं कि बेटी होगी हम तनाव में बैठ जाए, नहीं ऐसा नहीं सोचना। नहीं, मैं तो इसके ऊपर पोइम्स भी लिखती हूँ। आपको सुनाऊँ मैं एक पोइम
0: हाँ
1: अपनी
0: जी, हाँ
1: बेटी के
0: जी,
1: ऊपर?
0: जरूर जरूर।
1: छोटी सी लाइनों भी लिखी हुई है मैंने। जब मेरी बेटी IAS बनेगी, पापा का सपना पूरा करेगी। जब मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पापा का सपना पूरा करेगी। पापा की प्यारी, मम्मा की दुलारी, या मेरी बेटी प्यारी बेटी। इसका नाम द्विशा गोरसी है, बहुत प्यारी बेटी है मेरी ये।
0: बहुत बढ़िया पोयम आपने सुनाई, मेरे ते भी और हमारे श्रोताओं ते भी बहुत ही बढ़िया। तो जिस तरह आप एक बेटी हैं, तो बेटी होने के नाते आप समाज नू क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: हाँ जी, मैं तो समाज को यही बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो समस्या हमारे साथ हुई है वो आने वाले समय में बेटियों के साथ ना हो। क्योंकि एक औरत का सबसे बड़ा जो गहना है, एक लड़के का भी है, एक लड़की का भी है, वो है शिक्षा। जैसे किसी थिंकर ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध के समान है, जो इसका सेवन करेगा वह दहाड़ेगा अवश्य ही। धन्यवाद नेहा जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी,
1: धन्यवाद
0: हमारे
1: जी,
0: साथ
1: धन्यवाद जी।
0: जुड़ने वास्ता। सुनते रहो FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। जय हिंद, जय भारत। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: बहनों भाइयों, ये संगीत की धुन जरा सुनिए। शायद आपने अंदाजा लगाया होगा इस खूबसूरत धुन के मालिक कौन है।
1: जरा सी आहट होती है।
0: जी हाँ, हम संगीत निर्देशक मदन मोहन की बात करने जा रहे हैं। संगीत निर्देशक मदन मोहन, आपका जन्म 25 जून सन 1947 को बगदाद में हुआ। लखनऊ में संगीत की तालीम हासिल की और कुछ वक्त के लिए भारतीय सेना में भी आपने काम किया। उसके बाद मदन मोहन ने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया।

और फिर बॉम्बे यानी मुंबई का रुख किया, जहां उन्होंने कोरस गायक के तौर पे संघर्ष की शुरुआत की। मदन मोहन को गजलों और नज़्मों की रूहानी तर्जों के लिए जाना जाता है।

संगीत निर्देशक मदन मोहन ने लता मंगेशकर के साथ मिलकर लग जा गले आपकी नजरों ने समझा और नैनों में बदरा छाए जैसे कई यादगार गाने बनाए। मोहम्मद रफी उनके पसंदीदा गायक थे और उन्होंने मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कई कालजयी गीत गाए।

संगीत निर्देशक मदन मोहन का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। 50, 60 और 70 के दशकों में एक कामयाब भारतीय संगीत निर्देशक थे।

संगीत निर्देशक मदन मोहन ने कई सदाबहार गीत दिए। लग जा गले फिल्म वो कौन थी, झुमका गिरा रे, फिल्म मेरा साया, कर चले हम फिदा, फिल्म हकीकत तेरी आंखों के, फिल्म चिराग तुम जो मिल गए हो, फिल्म हस्ती जख्म, ये दुनिया ये महफिल, फिल्म हीर

संगीत निर्देशक मदन मोहन 14 जुलाई सन 1975 को 51 साल की कम उम्र में वो इस दुनिया से चल बसे।

रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें प्यार से महामना की उपाधि दी। संगीत निर्देशक मदन मोहन को सन 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

0: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। हम लेके आए हैं आपके लिए आज के कृषि समाचार।
2: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा।
1: 5 जिलों में खजूर की खेती का ट्रायल शुरू। सेम ग्रस्त और बंजर भूमि पर ले सकेंगे उत्पादन। प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए तक आमदनी ले सकेंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। केंद्रीय मृदा लावंदा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हरियाणा के करनाल, कैथल, हिसार, सोनीपत और महेंद्रगढ़ जिलों में खजूर की खेती का ट्रायल शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य खजूर के आयात पर निर्भरता कम करना और स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देना है। प्रदेश की गर्म और शुष्क जलवायु इस फसल के लिए उपयुक्त मानी जा रही है, जिससे इसके फसल होने की संभावना बढ़ जाती है। करनाल स्थित संस्थान में बरही किस्म के टिश्यू कल्चर से तैयार पौधे लगाए गए हैं। 1 एकड़ में लगभग 64 पौधे रोपे जा सकते हैं और एक परिपक्व पेड़ से 100 से 120 किलोग्राम तक उत्पादन मिल सकता है। इन पौधों की आयु लंबी होती है और वे लगभग 100 वर्षों तक फल देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार 2028 तक इन पौधों पर फल आना शुरू हो जाएगा और 5 से 7 वर्षों में किसान प्रति एकड़ 5 से 6 लाख रुपए तक की आय अर्जित कर सकेंगे। इस खेती में पानी और खाद की आवश्यकता भी कम होती है, जिससे लागत घटती है। हरियाणा में बड़ी मात्रा में भूमि लावण प्रभावित है, ऐसे में ये प्रयोग बंजर भूमि के उपयोग और मिट्टी सुधार में सहायक होगी। भविष्य में खजूर आधारित प्रोसेसिंग उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आयात पर निर्भरता घटने से किसानों को सीधा लाभ होगा। भारत हर साल करीब 5 लाख टन खजूर विदेशों से आयात करता है, जिसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए से अधिक होती है। यह खजूर मुख्य रूप से सऊदी अरब, यूएई, इराक और ईरान जैसे देशों से आता है। यदि हरियाणा सहित अन्य राज्यों में खजूर उत्पादन बढ़ता है तो किसान को सीधा लाभ मिलेगा। पर्यावरण संतुलन में सुधार होगा। खजूर का पौधा सामान्य भूमि के अलावा लवणीय और कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से पनप सकता है। इसकी जड़ें गहराई तक जाकर पोषक तत्व लेती हैं। जहां पारंपरिक फसलें असफल हो जाती है, वहां खजूर बेहतर विकल्प बन सकता है। इससे बंजर पड़ी जमीन का उपयोग बढ़ेगा और पर्यावरण संतुलन में भी सुधार होगा। कम लागत ज्यादा मुनाफा। खजूर की खेती में सिंचाई और उर्वरकों की जरूरत कम होती है, जिससे लागत घटती है। पौधों की लंबी उम्र के कारण बार बार रोपण की आवश्यकता नहीं होती है, बार बार जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। शुरुआती निवेश के बाद कई वर्षों तक लगातार उत्पादन मिलता है। यही कारण है कि इसे दीर्घकालिक और स्थिर आय का स्रोत माना जा रहा है। देश की लावणग्रस्त मृदाओं में खजूर एक बेहतर विकल्प है। केंद्रीय मृदा लावणता अनुसंधान संस्थान ने प्रदेश के 5 जिलों में ट्रायल शुरू किया है। 2028 से उत्पादन की उम्मीद है। इस खेती से किसानों की आय बढ़ेगी और देश की विदेशी खजूर पर निर्भरता कम होगी। डॉक्टर राजकुमार जागलान, वरिष्ठ वैज्ञानिक, केंद्रीय मृदा लावणता अनुसंधान संस्थान, करनाल। गर्मी में भी ले मूली का उत्पादन, 40 से 45 दिन में होगी तैयार। पूसा चेतकी देसी किस्म अधिक तापमान में भी देती है अच्छी पैदावार। मूली सामान्यतः शरदकालीन फसल है, लेकिन उन्नत तकनीक से इसे गर्मियों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। होटल और ढाबों में सलाद के रूप में इसकी अधिक मांग होने से किसान बेमौसमी उत्पादन कर अच्छी आय कमा सकते हैं। सब्जी विज्ञान विभाग MHU करनाल के डॉक्टर सुरेश कुमार अरोड़ा के अनुसार गर्मियों में मूली उगाने के लिए ताप सहनशील किस्मों का चयन जरूरी है। पूसा चेतकी ऐसी ही देसी किस्म है जो अधिक तापमान में भी अच्छी पैदावार देती है और 40 से 50 दिनों में तैयार हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली गुड़ाई 2 से 3 सप्ताह बाद मिट्टी चढ़ाना लाभकारी रहता है। फसल की खुदाई भी 40 से 45 दिनों में की जा सकती है। प्रति एकड़ लगभग 60 क्विंटल उत्पादन संभव है। इस किस्म के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिल सकता है। 3 से 4 बार जमीन की गहराई जुताई और 5 से 7 बार सिंचाई करें। भूमि की तैयारी, खेत को बिजाई से पहले समतल करना चाहिए। खेत की 3 से 4 गहरी जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाएं। गोबर की खाद को भी खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहिए। खाद एवं उर्वरक, 20 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ जुताई करते समय डालनी चाहिए। लगभग 24 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 46 किलोग्राम किसान खाद 25% व 12 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस यानी 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। सिंचाई, ग्रीष्म ऋतु की मूली में 5 से 7 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। पानी डोलियों के 3/4 भाग से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद की सिंचाई मौसम और भूमि की नमी के अनुसार 7 से 8 दिन के अंतर पर करनी चाहिए। बिजाई का समय, पूसा चेत की किस्म की बिजाई का उत्तम समय मार्च से जुलाई का महीना है। मूली की लगातार फसल लेने के लिए 15 से 20 दिन के अंतराल पर बिजाई करते रहें। मूली का उत्पादन अगस्त तक लिया जा सकता है। बिजाई की विधि, बिजाई हल्की डोलियों यानी मेड़ू पर करनी चाहिए। डोली का फासला 30 से 45 सेंटीमीटर और पौध का 6 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। डोलियों की चोटी पर 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाकर बीज बोना चाहिए।
2: गन्ने की फसल को स्केल कीड़ा, मोथा घास, काली चींटी से बचाएं। बिजाई के 40 दिन बाद पहला पानी लगाएं। गन्ने की फसल में मोथा घास, स्केल कीड़ा और काली चींटी नुकसान पहुंचा सकती हैं। बचाव के लिए किसानों को प्रबंध करने चाहिए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि यदि मोथा घास दोबारा उग जाए तो दवाई की इसी मात्रा का फसल में छिड़काव करें। 2-4 डी मोथा घास को ऊपर से ही नष्ट करती है। मोथा घास की रोकथाम के लिए चैम्प्रा 75%, हेलोस्फुरियान का 36 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोलकर बिजाई के 35-45 दिन बाद पहली सिंचाई के 2-3 दिन बाद जब मोथा घास 3 से 5 दिन की हो तब फ्लैट फैन नोजल से छिड़काव करें। बिजाई के लगभग 40 दिन बाद पहला पानी लगाएं। बत्तर आने पर गुड़ाई करें। यदि बिजाई के समय एट्राजिन नहीं डाल पाए हो तो पहली सिंचाई के बाद गुड़ाई करके 1.6 किलोग्राम एट्राजिन 50 घुप्पा प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल में छिड़काव करें। इससे गन्ना फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। कीड़ा ग्रस्त पत्तियों और फुटाव को नष्ट कर दें। स्केल कीड़ा के फैलाव को रोकने के लिए बीज ऐसी फसलों व क्षेत्रों से ना लें जहां कीड़ों का प्रकोप हो। कीड़ाग्रस्त क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्र में गन्ना बिजाई के लिए नहीं ले जाना चाहिए। काटने के बाद सभी पत्तियों व नए फुटाव को खेतों में नष्ट कर दें। कीटाग्रस्त क्षेत्रों में एक से अधिक मौड़ी फसलों में काली चींटी के नियंत्रण के लिए छिड़काव करें। खरपतवारों नियंत्रण के लिए 1 किलोग्राम 2-4D 80% सोडियम नमक 250 लीटर पानी में बिजाई के 7-8 सप्ताह बाद प्रति एकड़ छिड़काव करें। फसल में मोथा घास डीला की समस्या हो तो घास उगने पर 2-4D ईस्टर का 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। फरवरी व मार्च में बोई गन्ने की फसल में 45 किलोग्राम यूरिया डालें।
1: ये थे आज के कृषि समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको इन कृषि समाचारों से लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि समाचार है तो आप हमें हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम बाकी किसान भाइयों तक उस जानकारी को लेके जा सकते हैं। आप हमें लिख सकते हैं हमारे नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010।
2: इसी के साथ मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
1: जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे, घर परिवार का ध्यान रखेंगे और खुश और खुशहाल रहेंगे और उन्नत रहेंगे। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किडनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता RJ किडनी। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

कुछ लम्हे होते हैं जो बस दिल में बस जाते हैं, कुछ बातें होती है जो हर रोज की भागदौड़ से भी याद रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी और आप सुन रहे हैं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। यहां हर कहानी में होगी एक गहराई, हर शब्द में होगा एक एहसास और हर पल में एक अपनापन। तो आइए दिल से जुड़ते हैं और शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर साथ साथ। संस्कार देने के लिए आप ही शिक्षक हैं और आप ही पुस्तक। हर माता पिता की ये स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनका बच्चा न केवल पढ़ाई में कुशल हो बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक के रूप में भी पहचाना जाए। ये लक्ष्य केवल पढ़ाई या अनुशासन के नहीं प्रारंभिक जीवन में मिले संस्कारों से पूरा होता है। बच्चे में अच्छा व्यवहार, भावनात्मक समझ और सामाजिक कौशल विकसित करने कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें माता पिता की भूमिका केंद्रीय होती है। कुछ व्यवहारिक, संवेदनशील और असरदार उपायों से आप अपने बच्चों के अंदर ये बीज बो सकते हैं। बर्ताव में गर्मजोशी। जब बच्चा स्कूल से लौटे या दिन भर की थकान के बाद आपसे मिलने आए तो मुस्कान के साथ उससे मिलिए, उससे पुचकारिए, हाल पूछिए। ये छोटा सा भाव उसे ये एहसास दिलाता है कि वह आपके लिए विशेष है। इससे बच्चे में आत्मविश्वास और पारिवारिक जुड़ाव की भावना विकसित होती है। स्वयं बनिए उदाहरण। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने परवरिश में देखते हैं। यदि आप किसी ड्राइवर, सेल्समैन या घरेलू सहायक से सौम्यता और सम्मान से बात करेंगे तो बच्चा भी वही रवैया अपनाएगा। दूसरों की मदद, विनम्र भाषा का प्रयोग और धैर्यशील व्यवहार खुद भी अपनाइए। बुजुर्गों से जुड़ाव। अगर घर में दादा दादी या नाना नानी है तो बच्चों को उनके साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी कहानियां, अनुभव और जीवन दृष्टि बच्चों को नैतिक मूल्यों से जोड़ती है। इससे बच्चे में पारिवारिक समर्पण और संवेदनशीलता पनपती है। सफर में हो संवाद। यदि आप बच्चों को स्कूल छोड़ने या लाने जाते हैं तो ये समय केवल मोबाइल या म्यूजिक तक सीमित ना रखें। रास्ते के दृश्य, पेड़ पौधे, जानवरों या समाज के विविध रंगों के बारे में उनसे बात करें। ये संवाद उनकी जिज्ञासा, सामान्य ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता को निखारने में मदद करता है। दिनचर्या की शिक्षा। बच्चों को शुरुआत से ही दिनचर्या का महत्व समझाएं। सोने, खाने, पढ़ने, लिखने, खेलने और स्क्रीन टाइम का संतुलित रूटीन बनाए और उसे निभाने में उनका मार्गदर्शन करें। आप स्वयं भी रूटीन का पालन करें क्योंकि बच्चे देखकर ही सीखते हैं। सुनाए कुछ रोचक। रोजाना कुछ समय निकालकर बच्चों को कहानी या कविताएं सुनाए। सुनाने के बाद उन पर चर्चा करें, पूछे कि क्या समझा, क्या अच्छा लगा, क्या सीखा। इससे बच्चों में भाषा, कल्पना और नैतिक समझ का विकास होता है। अपनाए ये मूल मंत्र। आवाज ऊंची करना या बार बार डांटना बच्चे पर उल्टा असर डाल सकता है। बातचीत के माध्यम से ही समझाए। प्रार्थना या ईश्वर स्मरण को उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनाए। ये उसे मानसिक स्थिरता देगा। अपेक्षाएं यथार्थवादी रखें। एक ही दिन में बच्चा आदर्श व्यवहार नहीं सीख सकता। सार्वजनिक रूप से कभी भी उसका मजाक ना बनाएं। ट्यूबलेट, मोटू या बोंदू जैसे आरोप तुल्य नाम धरने से बचें। आप है सबसे असरदार। अच्छे संस्कार देने का अर्थ केवल अच्छी अच्छी बातें बताना नहीं है, बातों के साथ ही जीवन की हर छोटी बड़ी परिस्थिति में बच्चे के साथ रहकर उसे समझाकर और उदाहरण प्रस्तुत कर पथ दिखाना है। अभिभावक ही बच्चे के पहले और सबसे प्रभावशाली शिक्षक होते हैं। प्यार, धैर्य और निरंतरता के साथ की गई आपकी शिक्षा उसके बचपन को सुंदर तो बनाएगी ही, उसे भविष्य की नींव भी मजबूत करेगी। दोस्तों, वक्त का पंख तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी उड़ जाता है। देखते ही देखते हमारे इस खूबसूरत सफर का आज का पड़ाव आ गया। याद रखिए, जिंदगी छोटी है लेकिन अगर इसे मुस्कान और उम्मीद के साथ जिया जाए तो हर पल अमर हो जाता है। तो मिलेंगे हम फिर एक नए दिन, नई बातों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए
अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

हेलो, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे तक आप बने रहेंगे मेरे साथ और हम यह सफर तय करेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते। लब पर जो आ जाए तराना अच्छा लगता है, गीत नया हो या हो पुराना अच्छा लगता है। मैं हूं रमेश मराठा, वेलकम।

जब कभी फरामोश किया था, बर्फ की चादर पे चलते चलते, गुजरते गुजरते इन्हीं राहों पे, जहां आज हमारी चाहतों के टुकड़े अब बिखर चुके हैं। जब कभी रिश्तों की अहमियत तुम समझोगे, तब तुम खामोशी से, चुपके से आना और देना मेरी दहलीज पे दस्तक। शायद हम अपनी भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा करें और जिए अपने अतीत के साथ, संभलते संभलते एक दूसरे को थामते हुए।

जहां तुम की तरह तुम अक्सर कहा करते थे, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, पर काश कभी तुम लौट के आते, अपनी चुप्पी तोड़ लेते, मुझ पे एहसान फरमाते, अपने आगोश के पनाह में मुझे रख लेते, फिर मोहब्बत करते चुपचाप।

अपना दर्द छिपाए बैठे हैं एक सदी से। मुझको कहां खबर थी कि तुम यूं खफा हो जाओगे और साथ निभाने का अहद भी तोड़ दोगे। तुम सामने होते हो पर हर पल ओझल हो जाते हो शबनमी बूंदों की तरह। क्या तुम्हें मालूम है ढूंढा है मैंने तुमको इस कायनात के जर्रे जर्रे में इन हवाओं में इन वीरानियों में खंडहरों में यहां इन बेनाम बस्तियों में इन पानियों की गहराइयों में। पर मिला बस एक लम्हा तुम्हारी याद का सिर्फ तुम्हारी याद का।

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिज गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते। जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर भटकते रहे।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।
1: जब कभी मेरे आंगन में पेड़ों की इन्हीं शाखों पे लचकती थी चांदनी, जब खुशनुमा मौसम के इन हसी लम्हों में तुम्हारा करीब आना, रुक जाना, उठ जाना, फिर ढल जाना, बिना कुछ कहे दूर जाकर मोहब्बत का इजहार करना।

मुझको अब न आरज़ू कोई, न है कोई तमन्ना, बस तुम यूं ही मेरे ख्वाबों में आते रहो। यही एक हसरत लिए बरसों से भटक रहा हूं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे मेल करिए ramesh.marathi@gmail.com। अब चाहेंगे आपसे इजाजत और छोड़ जाते हैं

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: पेश है कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 3। प्रस्तुत करेंगे दीपक कश्यप।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और आपका स्वागत करता हूं कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 3 में दीपक कश्यप के साथ। मैं एक बार फिर हाजिर हूं हिंदी सिनेमा के 70 के दशक की एक ऐसी फिल्म की कहानी, किस्से और गीत लेकर जो आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। और कमाल की बात तो ये है कि यह फिल्म उस समय में 1 करोड़ के बजट में बनी थी और दुनिया भर में सुपरहिट रही 7.2 करोड़ की कमाई के साथ। और वह फिल्म थी उस समय की बेस्ट कॉमेडी मूवी, मेरा मतलब है बेस्ट हिट और एवरग्रीन कॉमेडी मूवी गोलमाल, जिसे डायरेक्ट किया ऋषिकेश मुखर्जी ने, जिसने उन्हें मास्टर ऑफ कॉमेडी बना दिया। हालांकि तब तक उनकी अधिकांश फिल्में गंभीर और गहन थी, यह मूवी केवल 40 दिन में बनकर तैयार हो गई थी। और इस मूवी का सेट कहां लगा था यह भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले शो की शुरुआत कर लेते हैं इस मूवी के टाइटल ट्रैक के साथ।
2: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

तो हम बात कर रहे थे इस फिल्म की शूटिंग के सेट की। गोलमाल फिल्म ऋषिकेश मुखर्जी ने बांद्रा इलाके में मौजूद अपने ही बंगले में शूट कर ली थी। भवानी प्रसाद का घर, भवानी प्रसाद का ऑफिस और ये सब जगह ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले के अंदर ही फिल्माए गए थे। फिल्म के हीरो राम प्रसाद शर्मा के घर का दृश्य जो आपने फिल्म में देखा होगा, वो भी ऋषिकेश मुखर्जी के बंगले का ही एक हिस्सा है। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी के घर अनुपमा के आसपास फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर के हॉल को भवानी फार्म बनाया गया था और उनके ड्राइंग रूम को राम प्रसाद का घर और उनके गार्डन को पार्टी सीक्वेंस के लिए शूट किया गया था। साथ ही आज के समय की फिल्मों में बड़े बड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स को हायर किया जाता है। वहीं गोलमाल फिल्म की शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर्स ने अपने असली कपड़ों में ही शूटिंग की थी। इतना ही नहीं, देवेन वर्मा को अपने ही कार से फिल्म में एंट्री लेनी पड़ी थी। अभी आपको छोड़ देते हैं एक गीत के साथ, लौट कर आपको बताएंगे किस तरह ऋषिकेश मुखर्जी इस फिल्म को बनाने के लिए कौन सी फिल्म से प्रेरित हुए थे।

ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल एक बंगाली फिल्म कांचा मीठा से प्रेरित थी। जब डायरेक्टर ने इस फिल्म को देखा तो उसके बाद उनके मन में ख्याल आया गोलमाल फिल्म बनाने का। कांचा मीठा फिल्म में मेन किरदार अपनी गलतियां छुपाने के लिए कई तरह के झूठ बोलता है और आखिर में खुद फंस जाता है। क्या आपको पता है इस फिल्म का एक सीन अमिताभ बच्चन जी की एक फिल्म से लिया गया था। गोलमाल फिल्म में एक सीन ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी ही फिल्म जुर्माना का डाला है, जिसमें अमिताभ बच्चन जी एक लड़की से फ्लर्ट करते हैं। लेकिन गोलमाल फिल्म में इस सीन में अमोल पालेकर थे। इस फिल्म को 5 भाषाओं में बनाया गया था। 1989 में गोलमाल के हिंदी में रिलीज होने के कुछ समय के अंतराल पर यह फिल्म तमिल में थिल्लो मिल्लो के नाम से बनी, फिर सिन्हाला भाषा में भी बनी, कन्नड़ में भी, और 1995 में मलयालम में भी इसका वर्जन बनाया गया था। अब बारी है इस फिल्म के एक और गीत की।

0: कहा सम कहा तुम कहा हम कहा ताल कहा सम कहा तुम कहा हम कहा तेरे कर तुम नान कर तुम तेरे कर तुम नान कर तुम हम तुम नाता हाथ ठिपा था लता हाथ पता पा मेरा कच करामत
1: ताते ठेठा ताते ठेठा ताते ठेठा ताते ठेठा

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का फिल्मी किस्से एपिसोड 3। अब वक्त है एक आखिरी किस्से का। अभी तक हम बात कर चुके हैं किस तरीके से यह फिल्म शूट की गई, कैसे इस फिल्म के कपड़े डिजाइन हुए और कैसे ये बंगाली फिल्म से प्रेरित रही और आगे जाकर 5 भाषाओं में भी बनी। और अब बात करते हैं इस फिल्म के कलाकारों की जिन्होंने इस फिल्म की कहानी में जान फूंक दी। सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी जी की। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाते वक्त ऋषिकेश मुखर्जी की पहली पसंद वह नहीं थी, उनके स्थान पर वे रेखा जी को चाहते थे, लेकिन उस वक्त वो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी और उस समय में वह अपने करियर में एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुकी थी और यह फिल्म मेल सेंट्रिक थी और उनके होने से बाकी के किरदारों का प्रभाव घट सकता था, जिस वजह से उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को चुना। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन लीड की, जो थे कॉमन मैन हीरो अमोल पालेकर जी और उत्पल दत्त जी। फिल्म में उत्पल दत्त जी भवानी शंकर का किरदार निभाया था और पहली बार उन्होंने किसी कॉमेडी फिल्म में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साथ ही अमोल पालेकर जी को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये थे आज की फिल्म के किस्से। और अगर इस फिल्म के किस्से और गाने दोनों पसंद आए हों तो यह फिल्म भी जरूर देखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपका रेडियो दोस्त दीपक कश्यप, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई फिल्म और उसके किस्सों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी किस्से एपिसोड 3, लेखक एडिटर व प्रस्तुतकर्ता दीपक कश्यप, निर्देशन सेजल पुंज। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज मेरे साथ हैं FM 90 के को फाउंडर डायरेक्टर किरणी।
1: सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज हम आपके लिए लाए हैं एक खास मुलाकात, एक ऐसी काबिले एहतराम सुनहरी आवाज की मालकिन उद्घोषिका और एक बेहतरीन इंसान श्रीमती माधवी शर्मा जी के साथ बातचीत।
1: इनके साथ बात करेंगे एक लेजेंडरी वॉइस और एस ब्रॉडकास्टर जो देश विदेश में प्रख्यात है। वो हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा भी है। वो है आदरणीय रमेश मरहट्टा जी।
0: आइए सुनते हैं और श्रोताओं को सुनाते हैं ये वार्ता दो अनुभवी ब्रॉडकास्टर्स के बीच, और साथ ही हसीन नगमों से सबका मनोरंजन भी करेंगे।
1: प्रस्तुत है ये कार्यक्रम।
2: नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं माधवी शर्मा, नाम ही काफी है, रेडियो की एक मायानाज उद्घोष का। माधवी जी नमस्ते।
3: रमेश जी, कुछ शब्द नहीं आ रहे मेरे सामने जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं कि आज की इस महफिल में आपने मुझे मेहमान बनाया है, और जितने विशेषण आपने मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, शायद मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ इसके बारे में मैं कह नहीं सकती।
2: कहाँ पैदा हुई आप?
3: मेरी पैदाइश जम्मू की है। मेरे पिताजी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे। वो उन्होंने BSc एग्रीकल्चर बापटला आंध्र प्रदेश से की थी और MSc एग्रीकल्चर कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की थी, और वो जम्मू कश्मीर के पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे।
2: अच्छा।
3: तो वहां पे तलाबतुलो फॉर्म था, वहां पे वो मैनेजर लगे थे, और मेरी पैदाइश उसी घर की है।
2: खेले कूदे
3: वहां पे। उसके बाद जैसे आपने कहा कि बचपन कहाँ बीता, मेरी दादी का घर, दादा दादी का घर लिंक रोड के पास मस्तगढ़ में था।
2: अच्छा।
3: वहां हम सब ताया चाचा उनके बच्चे इकट्ठे रहा करते थे एक संयुक्त परिवार में। और संयुक्त परिवार में आपको पता है
2: ज्वाइंट
3: फैमिली में उसका जो एक ऑरा ही अलग होता है, एक अलग सा आभास होता है। जहां तुम्हारा मनपसंद खाना बन रहा हो वहां जाके तुम आराम से खा लो, हो सकता है तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती रहे, लेकिन वो भी जानती थी कि अगर ये समय से नहीं आई है तो जरूर किसी जगह उसको अपना मनपसंद खाना मिल गया है।
2: अब वो दौर नहीं रहा,
3: वो बातें नहीं रही, वो रिश्ते नहीं रहे, और वो सुखद आभास नहीं रहा।
2: रेडियो के साथ कब से जुड़ी आप?
3: मैं मात्र 6 वर्ष की थी रमेश जी जब मैं रेडियो में मैंने आना शुरू किया, बच्चों के प्रोग्राम में। हमारे मोहल्ले में एक उद्घोषक थे RP साहनी, वो मेरे पिताजी के मित्र थे, तो कहने लगे आप माधवी को क्यों नहीं भेजते हो? तो पिताजी ने कहा अभी तो छोटी है तो उसे क्या भेजना, उनका भेजिए बच्चों के प्रोग्राम में। तो उनके आग्रह पर मैं 6 साल की उम्र से बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू किया। उस समय यहाँ बरगद का पेड़ होता था, अगर आपको याद है, आप भी हमारे बहुत पुराने हमारे सहकर्मी हैं। तो उस बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया जाता था और प्रिंटेड स्लिप्स मिलती थी, और जो बच्चा उस स्लिप को बिना फंबल के पढ़ लेता था उसी को लाइव माइक्रोफोन पे आने की इजाजत होती थी, क्योंकि तब बच्चों का प्रोग्राम लाइव होता था।
2: बिल्कुल।
3: तो वो जो परीक्षा थी हमने पास कर ली, और हमें पहली बार वो जो हमने स्लिप पढ़ ली और हमें उसके लाइव माइक्रोफोन पर बच्चों के प्रोग्राम में वो स्लिप पढ़ने का जो सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ, तो वहां से मेरा ये सुनहरी सफर जो है वो शुरू हो गया।
2: धीरे धीरे फिर आगे
3: बढ़ती गई, लेकिन आई नेवर लुक्ड बैक। उस बच्चों के प्रोग्राम के बाद, बच्चों के प्रोग्राम में तो आती रही लेकिन आई नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद मुझे ये लगा कि जैसे मैं इसी के लिए बनी हूं। अभी मैं बहुत छोटी थी, बच्चों के प्रोग्राम में आना शुरू

0: करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब थोड़े से और आगे सीनियर क्लास में गए तो मेरी पसंद कार्यक्रम पत्रावली और आपकी पसंद कार्यक्रम, उसको हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस,
1: अंग्रेजी पे आपकी पकड़ थी,
0: प्रोफेशन से थी, हाँ जी, उसमें भी थी पकड़। उर्दू आती थी कुछ, यहाँ के जो मेरे वरिष्ठ मेरे सहकर्मी थे उन्होंने बहुत प्यार दुलार के साथ मुझे सिखाया ग और अज, इस सब का कहते ना वो आपके जेब और वो सब कुछ उन्होंने मेरा दुरुस्त किया। पर वो कहते थे तुम्हारा इतना खराब नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बारीकियां जो है ब्रॉडकास्टिंग की, भाषा की, वो सिखाई। और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम म्यूजिक ऑफ माय चॉइस, पत्रावली और आपकी पसंद कम से कम 16-17 साल तक मैं करती रही।
1: आपके दूसरे साथी कौन थे जो?
0: बहुत से थे, शिव मोहन ने मेरे साथ वो प्रोग्राम किया। उसके बाद एक और थे हमारे यहाँ पे अनाउंसर रविकांत के साथ भी कुछ देर के लिए किया, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को करती रही। और तब तक मैं अपना कॉलेज शुरू कर चुकी हुई थी, और जब मैं ग्रेजुएशन मैंने कर ली रमेश जी, तो मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बलबूते पर MA इंग्लिश में सीट मिल गई। और अच्छा। मैं तो अपने इतनी प्रफुल्लित थी कि क्योंकि हमने लिटरेचर नहीं किया था तो हमें नहीं मिल सकती थी, लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बेसिस पे हमें सीख मिली।
1: उसमें यही रेडियो काम आया?
0: रेडियो काम आया। मैं बहुत अच्छे ड्रामास में जाती थी, मैंने मंचन भी किया उनका। और एक डोगरी नाटक था, जब मैं फाइनल ईयर थी अपने BSc होम साइंस में, तो हमारी एक मैम ने, जब क्या होता था कोई भी नोटिफिकेशन आती थी तो लड़कियों ने मेरा हाथ खड़ा कर देना इकट्ठा मिलकर, तो उसमें था हमारे हिस्से आया था डिस्प्ले योर टैलेंट में, यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हुआ करता था, आज भी होता है
1: जी जी।
0: हमारा उसमें नाटक आया डोगरी में।
1: अच्छा।
0: तो प्रोफेसर लाल हुआ करती थी, तो कहने लगी कौन कर सकता है डोगरी का, तो मेरी सहेलियों ने कर दिया। लेकिन मैं थोड़ी हिचकिचाहट से उठी और मैंने कहा मैम मुझे करने में कोई आपत्ति नहीं है।
1: भाषा पे पूरी पकड़ थी आपकी डोगरी भाषा पर?
0: हाँ, घर में पूरा प्रयास होता था पिताजी माता पिताजी का कि डोगरी बोली जाए, क्योंकि वो आपस में बोलते थे। फिर भी आप ये कहें कि हम बहुत फ्लुएंसी से बोलते थे, नहीं बोलते थे। तो उन्होंने जब कहा कि, मैंने कहा मैम मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कुलीग्स तो चाहती है, मेरी सहपाठी तो चाहती है कि मैं करूं, लेकिन मेरी फ्लुएंसी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस की बात है, डोगरी होते हुए तुम्हें डोगरी नहीं आती, कैसे डोगरे हो तुम। मुझे वो बात दिल में चुभ गई। घर में मैं गई और पिताजी के साथ लड़ाई करने लगी, आपने हमें डोगरी क्यों नहीं सिखाया। उनका, मैं और तुम्हारी माँ तो डोगरी में ही बात करते हैं, तुम ही हिंदी और अंग्रेजी का गेयर लगाती हो। तो वो मेरे लिए एक चैलेंज था, बहुत रोई मैं। पर पिताजी ने कहा अगर सच्चे मन से आपको उनकी बात बुरी लगी है तो टेक इट अप एज चैलेंज। मैंने वो चैलेंज लिया, 17 पेज का रोल था, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा शीशा तुम्हारा जज है, जो तुम्हारी एक्टिंग है उसमें निखार लाएगा, शुरू हो जाओ बिना पीछे देखे। तो 17 पेज का मैंने अपने, मैं जानती हूँ और मेरा वो शीशा जानता है,
1: कितने,
0: वो मेरा जानता है, वो मेहनत की। और बहुत खुशी हो रही मुझे बताते हुए अपने सुनने वालों को कि डिस्प्ले ऑफ टैलेंट में उस साल मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।
1: ये स्टेज पे इसका मंचन,
0: स्टेज का मंचन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल का ये प्रोग्राम होता है, कॉलेज लेवल का।
1: उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे रेडियो में आप परमानेंट?
0: मैं बीएड कर रही थी तो कैजुअल अनाउंसर का निकला, मुझे बुलाया गया, कैजुअल अनाउंसर का मैंने दे दिया, तो उसमें मैंने क्लियर कर लिया। तो उसके बाद बुकिंग्स मिलने लगी और मीन वाइल मेरे फादर ने मुझे जबरदस्ती बीएड करवाई। जब मैंने पूछा कि क्यों करवाना चाहते हो,
1: आपको हम टीचर बनाना चाहते हैं,
0: ना, उन्होंने कहा जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जब नहीं चाहते हो, कोई भी बुरा समय आए, आपके हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। प्रोफेशनल डिग्री का कोई सानी नहीं है। बहुत मैंने उनसे, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ थी क्योंकि मैं MA इंग्लिश नहीं छोड़ना चाहती थी, अभी 4 ही महीने हुए थे मुझे MA करते, तो वो बहुत खुश थे कि इसकी प्रोफेशनल डिग्री हो जाए। उस वो जमाना कुछ और था रमेश जी, माँ बाप की कही बात पत्थर की लकीर हुआ करती थी और बच्चे उसको नकारते भी नहीं थे। करनी पड़ी बीएड, कर ली बीएड। और मैं एक्स कॉन्वेंटी थी, तो जब बात फैली कि एक्स कॉन्वेंटी जो है वो बीएड कर चुकी है, क्योंकि मेरी मामी जी वहां पढ़ाती थी, तो मुझे भी वहां बुलाया गया,
1: मौका मिला।
0: मैं नहीं चाहती थी पढ़ाना, लेकिन एक साल तक जब मैंने पढ़ाया बच्चे बहुत खुश थे, हमारी मैम बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे लगता था मैं किसी और के लिए बनी हूँ। तो जब सिस्टर ने मुझे कहा, प्रिंसिपल मैम ने, कि आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, उसी समय मैंने अपना मन बना लिया और सिस्टर को कहा, सिस्टर मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं रेडियो में, मुझे कैजुअल अनाउंसर का जो प्रोग्राम है करने के लिए ज्यादा दिन देने पड़ते हैं, तो मैं यहाँ नहीं इतना समय दे पाऊंगी। उसके बाद सुभाष शर्मा जी मुझे कंपेयरिंग के लिए बुलाया करते थे खेल जगत कार्यक्रम के
1: प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जी।
0: हाँ, बहुत उन्होंने मेरी भाषा में निखार लाने के लिए

0: बहुत प्रयास की और मैंने उनकी एक एक जो नुक्ता छीनी बिल्कुल मैंने सच्चे मन से उसको निभाया। बहुत से अच्छे लोग मिले इस दौरान और उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, और वो सीख कर अगर आज आपको लगता है कि माधवी किसी मुकाम पर वैसे तो नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ मैंने पूरी मेहनत से पूरे पैशन से अपने इस प्रोफेशन को निभाया है, क्योंकि लाइव माइक्रोफोन मेरा पैशन था। मुझे बहुत मौके मिले, मेरे फादर मुझे केएस बनाना चाहते थे, फॉर्म भी भरवाया उन्होंने और मैं कर भी लेती क्योंकि मैं बहुत मेहनती थी, और जो पिताजी चाहते थे माताजी वो तो मैं करती ही करती थी, लेकिन मैंने उनको ये नहीं कहा पहले कि मैं नहीं करूंगी। उसी दौरान क्या हुआ कि जब मैं यहाँ कैजुअल अनाउंसर आया करती थी तो परमानेंट अनाउंसर्स की पोस्ट निकली, मैंने उनको बिना बताए फॉर्म भर दिया और भगवान की कृपा से रिटर्न क्लियर हो गया, ऑडिशन क्लियर होगी। उसके बाद पद्मा सचदेव जी बॉम्बे से आई, इंटरव्यू था, इंटरव्यू क्लियर हो गया। यहाँ पे हुआ करते थे मेहत्रा साहब हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, तो कुछ महीने के अंदर अंदर हमारी अपॉइंटमेंट लेटर्स आ गई। जब लेटर हाथ में आ गई तो अब क्या कहूँ पापा को, मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया कि मैंने फॉर्म भरा था, मैंने रिटन टेस्ट दिया। जब रिटन टेस्ट देने आए कहते आज क्या था, मैंने कहा पापा आज ड्रामा की रिहर्सल थी। मैंने कहा भगवान मुझे माफ़ करना, मैं माता पिता के साथ कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अपने पैशन को नर्चर करने के लिए मुझे वो जरूरी था, वो झूठ नहीं था, वो अपने पैशन की तरफ जो यात्रा शुरू की थी उसका एक पड़ाव था। तो उसके बाद जब लेटर आ गई हाथ में तो मैं ऐसे झूमती जामती हाथ में लेटर लिए हुए घर पहुंच गई, तो पिताजी कहने लगे आजकल क्या बात है माधवी, तुम्हारे पांव जो है जमीन पर नहीं लग रहे। मैंने कहा बात ही कुछ ऐसी है पापा। तो बड़े हैरान हो गए कैसी बात है, मैंने कहा खुद देख लीजिए। जब उन्होंने खोला और देखा तो कहते ओ छे क्या किया तुमने, मैंने कहा क्यों पापा, कहते मैं तो तुम्हें केस आईएएस बनाना चाहता था। मैंने कहा पापा जो हाथ में आया, आप ही कहते हैं बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुशेस,
1: ले लो आप इसको,
0: जो हाथ में है उसमें तो करने दो मुझे, बाकी अगर किस्मत में होगा तो वो भी कर लेंगे। बट आई नेवर लुक बैक, क्योंकि मुझे मेरी मर्जी का काम मिल गया था। उन्होंने फिर एक मेरे लिए अड़चन पैदा की कि हमारे मुआशरे में लड़की को काम नहीं करने देते, तो तुम कैसे कर सकती हो, मैं हेड ऑफ द फैमिली नहीं हूँ, तुमको तायाजी से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा बात ही कोई नहीं, तायाजी तो मेरे बहुत बड़े मुरीद है। मैं भाग के गई, मैं कहा तायाजी, कहते क्या बेटा बड़ी खुश है। मैं कहा मेरी नौकरी लगी। कहाँ, मैं कहा रेडियो स्टेशन। अच्छा बहुत अच्छे। तो मैंने कहा तायाजी पापा नहीं मान रहे, कहते कि नहीं करती हैं लड़कियां। ओहो राम को मैं खुद मना लूंगा, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम जाओ। और मरते दम तक रेडियो ट्रांजिस्टर उनके सरहने के नीचे होता था।
1: रेडियो की यात्रा यहाँ से शुरू
0: हो गई। 6 साल की उम्र से जो शुरू हुई थी वो अगले पड़ाव तक पहुंच गई।
1: इस दौरान काफी कुछ करने को मिला,
0: काफी कुछ करने को मिला। एक बहुत सुखद यात्रा थी। और कहते हैं जब तुम किसी चीज को अपना पैशन बना लेते हो, इश्क जुनून की हद तक उसको तुम चाहते हो, फिर तुम अपना 100% देते हो।
1: किसी हद तक सफलता मिल ही जाती है,
0: मिल ही जाती है, और फिर कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती।
1: हमारे रेडियो में जब अनाउंसर्स की बात करें तो शिफ्ट सर्विस होती है। हाँ। मतलब मॉर्निंग में, दिन में, इवनिंग, लेट इवनिंग, ये आपको करना पड़ा।
0: करना पड़ा। उसी दौरान मेरी शादी हो गई और हम 4 अनाउंसर्स सिलेक्ट हुए थे, उसमें मेरे जीवन साथी भी थे। मुझे नहीं पता था मेरे जीवन साथी बनेंगे, तो लेकिन वो केएस की हुई थी उन्होंने, उनकी रिट चल रही थी। तो उस दौरान डॉक्टर जैरथ हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे, वो बहुत उन्हें चाहते थे क्योंकि वो उनके टीचर रहे थे, तो उनका जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता यहाँ आ जाओ, यहाँ पे करो, तो वो सफर शुरू हुआ। लेकिन हमारी बरादरी में जो भी देखने आता था, डॉक्टर आता था, इंजीनियर आता था, प्रोफेसर आता था, लड़की तो पसंद है लेकिन नौकरी नहीं करवाएंगे। तो मैंने कहा पापा मैं ऐसे अपने साथी से जीवन कैसे काट सकती हूँ जो मेरी मेरे ही पैशन को दबाकर मुझे उस बंधन में बांधना चाहता है। मैं कहा मैं नहीं करूंगी, आप मान लीजिए शादी में उसी से करूंगी जो मुझे नौकरी करने देगा। तो वो बात चलती रही, हम काम करते रहे। इतने में जो मेरे हस्बैंड के जीजा जी थे, वो मेरे एल्डर ब्रदर के कुली सीनियर थे केंद्रीय विद्यालय में, उन्होंने कहा कि हम आपकी बहन से अपने ब्रदर ने
1: रिश्ते की बात
0: उन्होंने कहा। मैं मेरे ब्रदर ने कहा कि मैं बड़ा जरूर हूँ इससे, लेकिन मैं अपने पिताजी से बात करूंगी। पिताजी कहे ना मैं नहीं मानता, हमारा जात बरादरी, हम महाजन है, वो ब्राह्मण है, हम नहीं करेंगे। भैया ने कहा ठीक है पापा मत करो, आप मत करो, लेकिन आपको कोई ऐसा लड़का नहीं मिलेगा अपनी बरादरी में जो नौकरी करने देगा, ये नौकरी नहीं छोड़ेगी चाहे पति को छोड़ देगी, मैं अपनी बहन को जानता हूँ। तो पहले पापा ने ही माने, तो कुछ देर के बाद उनको लगा कि भगवान जो निश्चित करता होता वही है, ये बहाने बनते हैं, ये पहले से तय होते हैं। तो हमारी शादी हो गई श्री सौजन्य शर्मा जी से। मेरी डोगरी में निखार लाने के लिए उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। वैसे भी उनके योगदान के बिना, मेरी सासू माँ के योगदान के बिना, मैं इतनी मुश्किल नौकरी नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नौकरी थी। लेकिन कुछ ही महीने पहले मैंने अपनी सासू माँ को खोया है। उन्होंने मेरी पूरी नौकरी करवा दी और थोड़ी सी रह गई थी, तो मुझे कहती थी कि मुझे बड़ा शौक है, जब तू रिटायर होगी तो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। तो अपने बेटे को कहती बड़ा सा गुलाबों का हार बनाना ताकि मैं इसको वो पहना के लाऊं। इसने बहुत अच्छी नौकरी की है, जो भी इसको इनाम मिलता था पहले मेरी झोली में डालती थी। तो मैं कहती थी बेटा ये तुम्हारा इनाम है, तो कहती थी ना अगर मम्मी आप नहीं होते तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच।
1: घर का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर महिला के लिए, अगर वो कोई नौकरी।
0: हमारे अंदर एक मेरे और मेरी मदर इन लॉ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, MOU। जब मैं घर में होंगी वो रसोई घर में नहीं आएंगी, जब मैं घर में नहीं होंगी वो रसोई घर में आएंगी, संभालेंगी। और बहुत देर तक उन्होंने संभाला, जब थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब होने भी लगी, पर फिर भी बहुत हिम्मती थी वो।
1: इस दौरान माधवी जी रेडियो आप सुना करते थे जब घर में रेडियो?
0: वो तो मेरे मेरे वॉशरूम में, मेरे किचन में रेडियो हमेशा रहा। मेरे बचपन में वो होता था, उर्दू सर्विस पे आता था।
1: थोड़ा सा वो रिसर्च हमने किया तमिल इरशाद प्रोग्राम के बारे में,
0: मुझे बहुत अच्छा लगता था।
1: उन दिनों बहुत
0: बहुत, और मेरे फादर कहते भी थे सो जाइए। मैं कहा पापा इसके बाद, मैं उनसे मैंने उर्दू बोलनी सीखी थोड़ी। कहते ना ओनली अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड ब्रॉडकास्टर, तो वो सुनना जो बहुत जरूरी है एक अच्छा प्रसारक बनने के लिए।
1: बिल्कुल, पेशकश उनकी बड़ी लाजवाब, और उर्दू पे पूरी उर्दू पे पकड़
0: और आवाज का उतार चढ़ा बहुत कुछ सीखा मैंने।
1: अच्छा, आपकी नजर में रेडियो में अनाउंसर की कितनी अहमियत है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे वरिष्ठ उद्घोषक के रूप में आप सेवानिवृत्त हुए हैं, और आपका एक मुकाम है, एक नाम है, आपको दुनिया जानती है। और आपने जब मुझे कहा कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं, तो मेरे भी पांव जमीन पर नहीं थे, क्योंकि रमेश वराठा अपने आप में एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। तो
1: शुक्रिया
0: उद्घोषक का। जहां तक आपने सवाल है कि मुझे तो लगता है आप जितने भी बेहतरीन प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन जब तक जो उसका सेल्समैन है, सेल्स गर्ल है, वो उसे अच्छी तरह उसकी आइसिंग, केक की जो आइसिंग होती है वो करके आगे पेश ना करे, तो वो प्रोग्राम जो है वो अधूरा रह जाता है, वो सजता समरता नहीं है।
1: आमतौर पे माना जाता है कि जब भी रेडियो स्टेशन कोई आता है तो वहाँ वो अनाउंसर को देखने के लिए, मिलने के लिए जरूर,
0: क्योंकि उनकी आवाज वो सुनते हैं और उनके मन में आंखों के जरिए उन्होंने एक छवि।
1: कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट आपका अपना होंगे?
0: मैं अपनी ननद की बेटे की शादी पे अमृतसर गई हुई थी। तो अमृतसर के हमारे एक बहुत पुराने श्रोता हैं प्रेम सागर जी,
1: वो
0: हमारे आपका पत्र, आपकी फरमाइश में बहुत खतो खिताब
1: हमारे साथ भी उन्होंने कई बार बात की।
0: तो प्रेम सागर जी को पता नहीं उन्होंने ड्यूटी रूम में फोन किया तो किसने कहा वो छुट्टी पे है और अमृतसर गए हैं। प्रेम सागर जी मुझे फोन करने लगे, और वहां मैं अपनी फैमिली फंक्शन में बहुत बिजी थी, तो मैंने अपने पतिदेव को कहा कि कहते माधवी बिना जाए तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बड़े आर्डेंट फैन हैं। तो मैंने उनको कहा प्रेम जी मैं अभी तो बिजी हूँ, आप बताइए आप कब मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगी, आप बताइए जब आप फ्री हैं, और जब मैं फ्री होंगी कि आपको सूट करता है वो हमने तय कर लिया। एक दिन थोड़ा सा विराम मिला फंक्शन से, तो मैंने सौजन्य जी को लिया और हम चले गए। आप झूठ मानेंगे, उन्होंने जहां पे उनकी दुकान थी उन्होंने पूरे एरिया में झंडियां लगाई हुई थी, और सबको बताया हुआ था कि माधवी आ रही है। मैं अपने आप में झेप गई और मैं समझ नहीं आई कि मैं कैसे फेस करूं। लेकिन इतना प्यार दुलार जब मिलता है ना, तो आपको किसी हद तक रमेश जी लगता है कि आपने जो बचपन से मेहनत की है आज वो सपना साकार हुआ, और वो मेहनत सार्थक हुई। हमें वो ढोल के साथ, ढोल बज रहे हैं और हमें अपने घर तक ले गए प्रोसेशन में। घर में उनके वृद्ध उनके माता पिता थे, और बहुत बड़ा उन्होंने एक मोमेंटो बनाया हुआ था।
1: अच्छा।
0: मोमेंटो पेश किया, अपनी अर्धांगनी से मिलाया, जलपान कराया, और ये इस वादे से छोड़ा कि आप जब भी कभी आएंगे अमृतसर में मुझे जरूर मिलेंगी। अब वो अपने बेटे के पास फरीदाबाद भी जाते हैं, लेकिन वहां से भी फोन करते हैं हर बार, तुंदे फोन, तुंदे गीत या फोन इन तुंदी फरमाइश में, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय था। डोगरी संगीत का ये लाइव फोन इन प्रोग्राम था, और बहुत सालों तक मैंने किया, और बहुत संतुष्टि इससे प्राप्त हुई, क्योंकि एक पारस्परिक संबंध बन जाता है अपने लिसनर के साथ।
1: सही कहा।
0: गुलजार जी बहुत अजीम शायर और एक अजीम हस्ती, वो आए हुए थे जम्मू में, और मैं छुट्टी पे थी, मैंने लीव ली हुई थी। तो मुझे लियाकत जी का फोन आया, आप मिलना चाहती हैं? मैं कही पूछने की बात है। कहते आ जाइए, आप मानेंगे नहीं मैं कैसे पहुंची वहां पे यूनिवर्सिटी में और आमने सामने बिल्कुल उनसे बातचीत हुई, तो विश्वास ना हो कि हम
1: बातचीत कर रहे हैं।
0: बहुत बहुत ऐसी उनकी जो गाने हैं, जो उनके गीत लिखे हुए हैं,
1: उनका कहने का
0: कोई सानी नहीं है, उनका अंदाजे बयान ही कुछ और है, तो बहुत अच्छा लगा। इसी तरह अपने आपको पता होगा कि मुझे बहुत सी कॉन्सर्ट्स करने का मौका
1: मिला है।
0: बहुत सी कॉन्सर्ट्स मैंने, अनगिनत कॉन्सर्ट्स की। एक तो भाषा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, इस पे थोड़ी पकड़ थी, और भाषा पे माँ बाप बहुत ध्यान देते थे। हमने गलती की नहीं, हमारे पॉइंट्स कटने शुरू हो जाते थे, और हम अगर पूरा दिन गलती नहीं करते थे हमें 10 पॉइंट्स मिलते थे, यानी 10-10 रुपए इकट्ठे होने शुरू हो जाते थे।
1: और सबसे खास बात ये रहती है कि आप अंदाजे बयां आपका कैसा है, वो आपके बैठे हुए हैं
0: आपके श्रोता हैं,
1: उनके दिल को छू जानी चाहिए वो बात।
0: आपकी भाषा की शुद्धता, आपकी भाषा की स्पष्टता आपको अलग मुकाम दिलाती है, और वही एक उद्घोषक का पहला एक प्रीरिक्विजिट होता है, उसकी आवश्यकता।
1: उच्चारण कहते हैं, उच्चारण कहते हैं। लाइव ट्रांसमिशन के दौरान कोई फनी इंसिडेंट जिसको आप याद करते हैं, हंसी आती है
0: लाइव ट्रांसमिशन के दौरान? हंसी भी आती है और
1: उसको रोकना भी पड़ता है,
0: हंसी को रोकना पड़ता है, और कई बार आपकी सिट्टी पिट्टी भी गुम हो जाती है।
1: जी बिल्कुल।
0: कई बार क्या होता है कि आप लाइव ट्रांसमिशन चला रहे हैं और कोई ऐसा प्रोग्राम जो हमें पहले टेप्स मिला करती थी,
1: बिल्कुल
0: आपको याद होगा, टेप हमें मिली और उसका कार्टन जो था उसके ऊपर लिखा था ये फीचर है,
1: इसमें है।
0: लेकिन हम पहले टेप चेक कर लेते थे कि उसमें क्या है,
1: ये जरूरी होता है।
0: हाँ, तो कुछ 2-3 मिनट पहले, क्योंकि बड़ी
1: भागदौड़ होती है
0: और ट्रांसमिशन में उस दिन बहुत बिजी ट्रांसमिशन थी, मैंने 2-3 मिनट लगाया तो जो फीचर उस पे लिखा गया था कार्टन पे वो अंदर नहीं था। अब क्या किया जाए, फोन भी नहीं होते थे ऐसे जो आजकल काम करते हैं, आपके पास मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, क्या किया जाए। अब अनाउंस नहीं मैंने अभी तक किया हुआ था, सुबह समरी में हुआ होगा तो मैं कह नहीं सकती, सेकंड ट्रांसमिशन की बात कर रही हूँ। फीचर इतने में मैंने 1 मिनट भाग के, आपको याद होगा कि मेरा जो प्राइमरी की हमारा स्टूडियो है
1: और लाइब्रेरी के साथ है,
0: तो मैंने अभी पहला वो प्रोग्राम चल रहा था भाग के गई, उसको कहा कि ये कार्टन अलग है और उसमें वो फीचर नहीं है जो मुझे बैसाखी पे चलाना है, उसको मैं कह के आ गई। तो मैंने कहा आप टाइम लीजिए, फीचर कहते 25 मिनट का, मैंने कहा टाइम लेके मुझे दे डालिया, तब तक
1: अपने
0: लाइव अपने लिसनर्स के साथ जुड़ी रही और उनको अपनी अगली ट्रांसमिशन के प्रोग्राम्स के साथ अवगत कराती रही कि आप हमारी अगली ट्रांसमिशन में ये प्रोग्राम सुनेंगे, अगले दिन के कुछ खास प्रोग्राम जो उनके बड़े पसंदीदा कार्यक्रम है उनके बारे में बताती रही। इस तरह से मैंने 5 मिनट
1: पूरा
0: किया, थोड़े से हमारे जिंगल्स होते हैं उनको चलाया और कुछ ऐसे कुछ हमने लिखे होते हैं जो हम अपने श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। 5 मिनट का समय बहुत होता है ब्रॉडकास्टिंग में, लेकिन भगवान की दया से वो हो गया और वो कार्टन चेंज होके प्रॉपर जो फीचर चलना था वो जब आ गया तो बैसाखी का वो फीचर एयर पे मैंने दे दिया।
1: ये होता है अनाउंसर की जो कहते हैं ना हाजिर जवाबी और उसके
0: प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट,
1: बहुत जरूरी है। एक गाने की गुंजाइश है आपकी पसंद का कोई गाना?
0: गीत तो बहुत पसंद है मुझे, गीत संगीत ही मुझे इस स्टेशन में लेके आया, प्रसारण में लेकर आया, क्योंकि मौसिकी में म्यूजिक में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। लता मंगेशकर की आवाज में एक बहुत ही प्यारा गीत है फिल्म खामोशी का, हमने देखी है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये गाना हम आपको सुनाएंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।

0: आपका गॉडफादर कौन है रेडियो में?
1: गॉडफादर तो मैंने किसी को नहीं बनाया, सीखा सबसे, आप ये समझ सकते हैं। आपकी आवाज में जो एक उतार चढ़ाव था ना, उसकी भी मैं बहुत कायल थी। हमारे यहाँ अनाउंसर्स भी बहुत अच्छे थे, महमूद अहमद का नाम सुना होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: फीचर प्रोग्राम दरीचे मैंने 23 साल तक किया, रमा बेटी का रोल था उसमें और गाना भी गवाया जाता था मुझसे। लेकिन इतने दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो
0: वो ड्रामेटाइज हुआ करता था जी,
1: दिग्गज लोगों के साथ काम करने का जो आभास था सुखद, वो मैं बयान नहीं कर सकती। 23 साल तक इट वाज लाइक अ फैमिली टू मी। हमने हर हफ्ते मिलना, पहले महमूद अहमद जी स्क्रिप्ट लिखा करते थे, उनके बाद जे एस परदेसी जी कितने साल लिखते रहे, के सी मन्हास, संजीव शर्मा, इन सब ने स्क्रिप्ट लिखे, लेकिन वो प्रोग्राम चलता रहा 23 साल तक। और वो क्या था, सामाजिक कुरीतियों पर आधारित प्रोग्राम था, जो समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां अपना सिर उठाती थी, उनको कैसे दूर किया जाए, उनसे कैसे निपटा जाए, उस पर एक फीचराइज पारिवारिक रूपक हुआ करता था दरीचे। आपका पत्र फरमाइश कम से कम 15 साल तक किया, 18 साल तक प्रोग्राम किया, पत्रावली और आपकी पसंद 1.5 दशक से ज्यादा सालों तक किया। हमारे विविध भारती में कमल जी की मैं बड़ी कायल थी, कमल शर्मा जी बहुत अच्छा बोलते थे, भाषा पे उनकी पकड़ थी, उतार चढ़ाव भाषा का और लहजा उनका बहुत बेहतरीन, बेहतरीन प्रसारक थे, बेहतरीन उद्घोषक थे।
0: उनको आप लगभग सुना करते थे?
1: मैं सुना करती।
0: माधवी जी, अनाउंसर के लिए छूट होती है जब वो प्रोग्राम प्रेजेंट करता है, कोई भी प्रोग्राम हो, आपको ये छूट मिलती थी?
1: बिल्कुल सही कहा, स्काई इज द लिमिट। और ये एक अनाउंसर इंडिविजुअल के हाथ में है कि वो जो उसको 30 मिनट या 15 मिनट मिले हैं उनका वो कितना अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, ताकि एक एक शब्द जो है सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचे, माइक से दिल तक। और जो ये कहते ना, सीक्रेट को समझ जाता है, राज को समझ जाता है,
0: वही एक सफल अनाउंसर की श्रेणी में आता है।
1: मैं तो नहीं जानती कि मैं कितनी सफल हुई हूँ अपनी इस यात्रा में, लेकिन अपनी तौर से भरसक प्रयास किया कि श्रोताओं की उम्मीदों पर खरी उतर सकूं।
0: लिसनर्स का फीडबैक किस तरह मिलता था आपको?
1: कुछ लोग आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे एक नाबीना थे, आजकल वो गांधीनगर कॉलेज में लगे हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे, मुझे उनका नाम भूल, राहुल
0: जी,
1: आजकल वो असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक के हैं और बच्चों के प्रोग्राम में आया करते थे और बहुत अच्छा गाते थे। हाँ, जितना हम उनको उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हमने कभी उसमें हिचकिचाहट ना दिखाई है और ना हमसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि बच्चों से मुझे बहुत प्यार था। बच्चों का प्रोग्राम मैंने बहुत, 1988 में मेरी नौकरी लगी, उससे पहले से मैं प्रोग्राम किया करती थी और 2002 तक मैं करती रही। आप समझ लीजिए कितने सालों तक मैंने ये प्रोग्राम, 22-23 साल तक मैंने ये प्रोग्राम किया। तो
0: और बच्चों के प्रोग्राम को प्रेजेंट करने की खास बात ये रखनी पड़ती है कि आपको बच्चा बनना पड़ता है,
1: आपको बच्चे की लेवल तक आना पड़ता है,
0: तब
1: जाके बात बनती है। और बहुत लोकप्रिय प्रोग्राम था और मैं उसे बहुत एंजॉय करती थी और लाइव प्रोग्राम हुआ करता था, रिकॉर्डिंग तो बाद में शुरू हुई।
0: राहुल जी बात कर रहे थे,
1: राहुल जी बहुत अच्छा गाते थे, लेकिन मैंने उनको ये कहना शुरू किया, पहले मैं उनको ये कहती थी कि आपकी जो एक कमी है आपने क्या उसको ठीक करने की कोशिश की, तो कहते थे बहुत देर से चल रहा है, चलिए देखते हैं। लेकिन कुछ जन्मजात ऐसे विकार होते हैं जो नहीं ठीक होते, पर बेहतरीन इंसान था वो। तो मुझे आप मानेंगे, मैं एक बार बच्चों के प्रोग्राम के बाद उसकी पढ़ाई शुरू हो गई, वो हमसे अलग हो गया, परेड कॉलेज में मैं किसी प्रोग्राम में गई हुई थी, तो मुझे वहां पे उन्होंने गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया हुआ था। मैं बैठी हुई थी तो किसी से बात कर रही थी, तो राहुल अपना ऊपर गाना प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे तब तक पता नहीं था ये राहुल है। बातचीत करते करते अचानक वो ऊपर से स्टेज से कहता है, माधवी मैम बैठी हुई है हॉल में। तो मैंने कहा हाँ मैं माधवी हूँ। कहता मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, जैसे उसने कहा, मैं कहा आप राहुल हो? कहता मैं राहुल हूँ। तो मुझे लगा, और उसको कह रहा मैम आज मैं आपकी पसंद का ही कुछ पेश करूंगा, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैंने, रेडियो में तो मैं आपको सुनता रहता हूँ, लेकिन ऐसे आपकी आवाज मैंने बहुत देर के बाद सुनी। जितना दुलार प्यार वो बच्चे करते, तो मैंने कहा तुम वो बहुत अच्छी गाते हो, मेहदी हसन की गजल, प्यार भरे दो शर्मीले नैन,
0: क्या बात है,
1: क्या खूबसूरत, उसने उसकी गजल की अदायगी का कोई सानी नहीं, कोई विकल्प नहीं है। और मुझे इतनी खुशी हुई, एक दिन उसका फोन हुआ, कुछ साल पहले आया, तो कहने लगा, मैंने उसका नंबर सेव किया, मैं राहुल क्या हाल है, कैसे याद किया है, कैसी जिंदगी गुजर रही है? कहता मैम आपके बलबूते पर बहुत अच्छी गुजर रही है। मैंने कहा मेरा तो इसमें कोई योगदान नहीं है। मैम मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है,
0: क्या बात है,
1: नेट क्लियर किया पहले मैंने, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया हूँ गांधीनगर कॉलेज में। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरा अपना बच्चा जैसे किसी मुकाम पर पहुंच गया है, और मैंने जाके भगवान को इतना शुक्रिया अदा किया, इतना ग्रैटिट्यूड पे किया कि एक बच्चा जिससे आपने कुछ ले लिया था उसको बहुत कुछ दे दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं भगवान कुछ अगर लेता है बहुत कुछ देता भी है, उसी चीज के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए।
0: माधवी शर्मा को कभी किसी प्रोग्राम को पेश करने में कोई चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, हाँ मैं करूंगी और ये हो गया?
1: हाँ, इस दौरान बहुत से दिग्गजों को भी मैंने उनको होस्ट किया, चाहे वो उस्ताद अमजद अली खान हो, पंडित शिव कुमार शर्मा हो, बहुत से, आपको पता हमारे यहाँ जितेंद्र सिंह आए, राधिका चोपड़ा, सीमा अनिल, बहुत से,
0: यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह।
1: प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की तो मैंने नरेंद्र मोदी जी की
0: कई बार,
1: तीन बार मैंने लाइव किया है उनको होस्ट स्टेज पे, और पांच बार उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने होस्ट किया है। वो तो एक अपने आप में अलग एक अनुभूति होती है। लेकिन जब मुझे जम्मू से श्रीनगर बुलाया गया, एक उनका पिछली बार इसलिए वो श्रीनगर आ रहे थे, तो मुझे अटल डुल्लू जी के सेक्रेटरी ने फोन किया कि मैं चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से बात कर रहा हूँ और डुल्लू साहब आपसे बात करना चाहेंगे। माधवी जी कैसी हैं आप? मैंने कहा सर बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। कहने लगे आपको श्रीनगर आना होगा नेक्स्ट फ्लाइट से। मैंने कहा सर क्या हो गया? मुझे पता था मोदी जी आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप होस्ट करो। मैंने कहा सर मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मान रही हूँ कि आप मुझे इस काबिल समझ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, मेरी अवेलेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि मैं उनके परमिशन के बिना नहीं आ सकती, तो आप हेड ऑफ द ऑफिस से बात कीजिए और मेरी अवेलेबिलिटी। उन्होंने उसी समय किया, तो फिर मुझे कहा गया कि हमें दिल्ली से लेनी है परमिशन, दिल्ली से भी ले ली गई और मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग श्रीनगर पहुंच गई, क्योंकि मैंने जम्मू में भी उनके बहुत किए थे, जम्मू में भी मैंने उनको होस्ट किया था। तो वहां जाकर ये लगा कि यहाँ भी बड़े बेहतरीन अनाउंसर हैं, इतनी उनकी अच्छी आवाज है, आवाज में उनकी इतनी खनक है,
0: जी, जी, जी।
1: आपने इतने बेहतरीन प्रोग्राम अपने टाइम में किए हुए हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसको आपने होस्ट ना किया हो। लेकिन वहां जाके इतना जरूर तुम्हें महसूस होता है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, इसे ऐसा सुनहरी मौका मिला है,
0: ये बहुत बड़ी बात है,
1: और बहुत अच्छे से वो हो गया। तो आप सच मानेंगे ये बात मैं अपने श्रोताओं से आज पहली बार साझा कर रही हूँ। जैसे ही प्रोग्राम खत्म होने को था तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी आपकी गरिमा में उपस्थिति और आपके ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए हम आपके तहे दिल से आभारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच मानिए प्रधानमंत्री जी मेरे से तीन कुर्सी दूर थे, मेरी ओर मुड़े और कहने लगे बहुत अच्छे, ऐसे किया और आगे से अंगूठा किया, बहुत अच्छे। मैं एकदम से हिल गई कि एक प्राइम मिनिस्टर को क्या लगा कि वो किसी होस्ट को ऐसा बोले।
0: जी बिल्कुल,
1: लेकिन अपने गुरु महाराज का शुक्रिया भी मैंने अदा किया अपने आंखें बंद करके कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं थी लेकिन आपने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैंने एकदम से ऐसे किया, जब प्रधानमंत्री जी चले गए, चीफ सेक्रेटरी, सारे आईएएस ऑफिसर सब आके गले लगा रहे, कहते ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि किसी होस्ट को प्रधानमंत्री जी ने किया हो। तो मुझे लगा कि मुझे रिटायरमेंट से पहले सबसे बड़ा तोहफा जो है वो मिल गया है।
0: जम्मू रेडियो के तीन ऐसे पसंदीदा कार्यक्रम बताइए जो आपको बेहद पसंद है, जो आप नहीं करते हैं कोई और करता है।
1: अच्छा ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया
0: जिसको आप प्रेजेंट नहीं करते हैं कोई और प्रेजेंट करता है।
1: अच्छा जी, एक तो आप जो करते थे कठुआ स्टेशन से, वो बहुत मेरा पसंदीदा कार्यक्रम था,
0: यादें बन गई गीत।
1: यादें बन गई गीत बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और उससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा कि एक अनाउंसर को अगर अपने लिसनर की जो कैप्टिविटी, उसको कैप्टिवेट करना है, उसके इंटरेस्ट को कैप्टिवेट करना है, उसकी तवज्जो हासिल करनी है, तो कैसे करनी है वो आपके हाथ में है। इसके अलावा हमारे यहाँ से ड्रामा निगार बहुत अच्छे हुए हैं, महमूद अहमद जी की लिखी झलकियां और उनकी पेशकश तो बहुत अच्छी थी, रीटा यूसुफ बहुत अच्छी अनाउंसर हुआ करती थी और बहुत अच्छा पंजाबी प्रोग्राम करती थी, मैं उनकी आवाज़ की बहुत कायल थी और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा। उनके पंजाबी प्रोग्राम इतने मकबूल थे, मैं कहा करती थी कई बार मजाक से ही, अगर आप इनको LOC पर खड़ा कर दें तो पाकिस्तान और भारत में जो भी कुछ भी कमियां हैं,
0: खटपट
1: है, वो दूर हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: ये तो मजाक की बात थी, लेकिन उनके चाहने वाले अक्रॉस द बॉर्डर बहुत लोग थे। हम पत्रावली और आपकी पसंद किया करते थे रमेश जी, मैं और नितिश, पत्रावली राखी पसंद जो युवानी सर्विस पे आता था, हमें पाकिस्तान से गिफ्ट्स आई पैक होके, वहां से हमको पार्सल्स आए। तो आप जान सकते हैं कि ये जो दूरियां हैं ये औरों ने बनाई है, आपस में कोई दूरी नहीं है, हमारा वही एक तरीकाकार है, हमारे रिवाज वही हैं, सब कुछ एक है।
0: और आवाज की कोई सरहद नहीं है।
1: आवाज की कोई सरहद नहीं, बिल्कुल सही कहा, आवाज की कोई सरहद नहीं है।
0: बिल्कुल, ये तो दो प्रोग्राम हुए, तीसरा प्रोग्राम बताइए।
1: तीसरा प्रोग्राम आप हमारे यहाँ से दरीचे प्रोग्राम, जो मैं तो खुद भी थी लेकिन पेश करने वाले महमूद अहमद जी थे, मैं उनकी भी बहुत कायल थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते थे। सुभाष शर्मा जी खेल पत्रिका कार्यक्रम करते थे, और वो पत्रिका कार्यक्रम क्या होता था, 9:30 बजे टेप चलनी होती थी, 8 बजे वो जागते थे उस अपनी नींद से, क्योंकि काम करके फिर 8 बजे
0: उन्होंने 5-5, 10-10 मिनट करके वो कट्स लाते थे।
1: पर वो जो उनमें प्रोफेशनलिज्म था,
0: कमाल का,
1: जो वो जो उनकी एंकरिंग थी, जो उनकी प्रोडक्शन थी, जो उनकी आवाज का इस्तेमाल था, उसका
0: लाजवाब था। एक गाना आपको हम सुनवाना चाहेंगे, कोई आपकी चॉइस। लता जी का तो गाना आपने सुनवाया खामोशी फिल्म से।
1: एक और गाना है बहुत पसंद है मुझे मुकेश की आवाज में, फिल्म आनंद का।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: वो कौन सा गाना है?
0: मैंने तेरे लिए ही सात रंग
1: के सपने।
0: क्या बात है, ये गाना हम आपको सुनवाते हैं।
2: मैंने

0: माधवी जी, हिंदू फिलॉसफी में पुनर्जन्म की बात होती है। अगर आपको दूसरा जन्म मिलता है तो क्या बनना चाहेंगे आप?
1: ये सवाल तो आपको, इसका जवाब आपको पता है मैं क्या दूंगी। मैं एक पुनर्जन्म क्या, जितने भी जन्म दोबारा लूं, मैं हर जन्म में एक प्रसारक ही बनना चाहूंगी। आवाज की दुनिया की रेडियो सखी माधवी ही बनना चाहूंगी। ये मेरे
0: हाँ,
1: दिल के बहुत करीब था, है और रहेगा, क्योंकि ये मेरा इश्क, जुनून, मेरा पैशन था, है और रहेगा।
0: इसके अलावा कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए रेडियो के दौरान जिसको आप कभी भूल नहीं पा रहे हैं, रेडियो अपनी सर्विस के दौरान।
1: हाँ, हमारे यहाँ से 10 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ। आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स आयोजित हुए थे जम्मू में, उसको होस्ट करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ। डीजी साहब आए हुए थे, डीडीजी आए हुए थे चार, तो वो लोग बहुत डरे हुए सहमे हुए थे कि जो पिछली बारी का आकाशवाणी एनुअल अवार्ड था वो कोलकाता में हुआ था, तो कुछ इतना उसमें कुछ खामियां रह गई थी। तो जब प्रोग्राम हो गया तो ब्रिजेश्वर सिंह हुआ करते थे डीजी, उन्होंने गले से लगा लिया। उन्होंने कहा कि आज मैं इतना खुश हूं माधवी, मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि हम बहुत डरे हुए थे। और प्रोग्राम इतना स्मूथ गया, मेरे साथ रविकांत थे, वो हिंदी में कर रहे थे, मैं अंग्रेजी में कर रही थी। गुलाम नबी आजाद तब
0: मिनिस्टर हुआ
1: इंफॉर्मेशन एंड
0: करते,
1: ब्रॉडकास्टिंग
0: ब्रॉडकास्टिंग
1: मिनिस्टर
0: मिनिस्टर
1: थे,
0: थे जी।
1: तो बहुत जोरावर में ये प्रोग्राम हुआ था, बहुत दुनिया थी, बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रोग्राम हुआ। और जो मुझे संतुष्टि मिली कि जो लोग मुझसे तवक्को रखते थे उस पर मैं खरी उतरी, और ये प्रोग्राम मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी,
0: ये ऐसा प्रोग्राम है जिसको आप कभी भूल नहीं पाएंगे।
1: क्योंकि आकाशवाणी एनुअल अवार्ड्स का जो एक दर्जा
0: बिल्कुल
1: है
0: सही कहा
1: वो अपने
0: आपने।
1: आप में बहुत ऊंचा है। और किसी भी स्टेशन के लिए उसे सफलता से होस्ट करना
0: ये बहुत बड़ी बात है, एक चैलेंज भी है।
1: चैलेंज था।
0: आपका मनपसंद उद्घोषक कहीं से भी?
1: रमेश मराठा जी तो मेरे मनपसंद उद्घोषक हैं, कमल शर्मा जी की मैंने बात की, उसके बाद एक और विविध भारती के अनाउंसर हैं, अमरकांत दुबे जी।
0: अमरकांत दुबे,
1: अमरकांत दुबे जी हमारे यहाँ से
0: जम्मू जम्मू
1: जम्मू
0: रेडियो
1: के,
0: से जी।
1: जम्मू शिव मोहन शर्मा बहुत अच्छे उद्घोषक रहे हैं। विपुल जी अपने टाइम के बहुत थे, क्योंकि वो डॉक्टर्स के साथ उनका बड़ा राबता था और बेहतरीन इंटरव्यूज लिया करते थे। गिरजा जी जो एक टाइम
0: बिल्कुल
1: में
0: सही कहा
1: पहली
0: आपने,
1: उद्घोषिका थी टीवी की,
0: उसके बाद रेडियो में आई हो
1: टीवी
0: जी।
1: की जब शादी हो गई तो फिर वो रेडियो में आई। उस समय टीवी का क्या जुनून था लोगों को, और वो बड़ी जितनी खूबसूरत थी उतनी खूबसूरत उनकी आवाज थी, उतनी ही खूबसूरत उनकी अदायगी थी। और मेरी कुलीग्स रही हैं रमनी शर्मा, सुनीता शर्मा, और अनाउंसर्स में तो सुनीता भगत बहुत अच्छी थी। एक नाम और ऐड करना चाहूंगी, रविकांत शर्मा अपने काम में बहुत मेहनत से काम
0: और
1: करते
0: डोगरी
1: थे,
0: भाषा
1: डोगरी
0: में
1: भाषा में
0: ना
1: उनकी
0: उनकी
1: बहुत
0: जबरदस्त
1: पकड़ थी,
0: पकड़ है,
1: जबरदस्त
0: इसमें
1: पकड़
0: सही कहा
1: थी।
0: आप। किसी भी महफिल में जब आप जाते हैं तो आपसे लोग ऑटोग्राफ लेते हैं।
1: आपको लगता है कि हम उस मुकाम पर पहुंच गए
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने
1: हम
0: खुद
1: एक
0: ऑब्जर्व किया है।
1: क्विज प्रोग्राम कर रहे थे लाइव, दिस वाज इन अभिनव थिएटर, तो जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों होस्ट कर रहे थे, तो जब हम कर रहे थे तो उनको पता चला कि माधवी कर रही है, तो आप मानोगे, उनका हमें आपके ऑटोग्राफ चाहिए, तो उनके पास कागज नहीं था, तो उसने 1 रुपये का नोट निकाला, उसे कहा कि मुझे इस पे आप
0: इस पर
1: ऑटोग्राफ
0: आप
1: दे दो।
0: दे दें।
1: फिर किसी महफिल में जो मैं होस्ट कर रही थी वो मुझे मिले, वो काफी वृद्ध वयोवृद्ध हो चुके हुए थे, मुझे कहने लगे बेटा तुम तो मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम अभी भी वैसी ही हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मैंने तुम्हें आवाज से, मैं कही तुम माधवी है तो तुम बदली नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ दिखाना जो आज तक मेरे पर्स में है। उन्होंने पर्स खोला और उसमें से वही 1 रुपये का नोट निकाला जिसमें मैंने ऑटोग्राफ दिया था।
0: मुझे लगता है कि ये एक अनाउंसर का सबसे खूबसूरत सरमाया है उसके
1: सरमाया,
0: उसके
1: बिल्कुल सही कहा
0: उसके काम
1: आपने।
0: का। रेडियो सखी माधवी शर्मा क्यों और कब तक?
1: रेडियो सखी माधवी इसलिए क्योंकि रेडियो ने उसको सखी बनाया है, रेडियो ने उसे वो ख्याति दी है, रेडियो ने उसे पॉपुलर किया है। रेडियो जब तक है तब तक रेडियो सखी माधवी है।
0: बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक गाना आपकी चॉइस का हम सुनना
1: ये
0: चाहेंगे।
1: चॉइस आपकी होनी चाहिए, आप जानते हैं मेरी चॉइस, तो ये गीत मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी मर्जी का गीत चला दीजिए, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: गया।
1: बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने के लिए बड़ी जुरत होनी चाहिए। मैंने वो जुरत की, मैं किस हद तक कामयाब रहा।
2: आप जिस हद तक कामयाब हैं ये हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और आपने कितनी संजीदगी से और कितनी बार मुझसे आपने कहा कि मैं एक करना चाहता इंटरव्यू, लेकिन कुछ कहते ना तुम इतने बिजी होते हो कि समय नहीं निकल पाता, पर आपने मेरा जो था ना वो काम जो था अधूरा नहीं रहने दिया, और मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जो आपने सोचा था वो कर दिखाया।
1: रेडियो के अंदाज में आप इस इंटरव्यू को क्लोज करेंगे।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे थे महफिल प्रोग्राम में, आज शरीके गुफ्तगू थे मेरे वरिष्ठ साथी श्री रमेश मराठा जी और मैं रेडियो सखी माधवी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया माधवी जी, आपने वक्त दिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे जीवन की कहानी को मेरी जुबानी श्रोताओं तक पहुँचाया, मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
3: अभी आप सुन रहे थे सार्थक वार्ता श्रीमती माधवी शर्मा और रमेश मराठा के बीच। हम आप दोनों के बहुत आभारी हैं।
4: श्रीमती माधवी जी के अनुभव टीम रेडियो विदस्ता के लिए बहुत खास रहा। मुझे भारत सोपोरी
3: और मुझे किडनी, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
4: ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, मीन्स कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेड ब्लड डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल

0: तो ये क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनवरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
1: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
0: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जाम्पल फैटी फूड है उस पर कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफ स्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
1: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
0: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना, या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सब से एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसके भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: थैंक यू सो मच।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेरी निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है
0: जी।
1: जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अटैक का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता असले पौन पटाके सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: हम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेड ब्लड डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज की सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रेस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनवरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है
0: जी।
1: जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। तो अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोमनिया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

0: तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।
1: तो बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रूजिव पनिन पसंदीद बात।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: वन विकास IHD योजना के तहत किसानों को इन आधुनिक उपकरणों फेरोमोन स्टिक्की और LED ट्रैप की खरीद पर 75% तक का भारी अनुदान प्रदान कर रही है।
1: तरबूज की खेती में इस बार प्रति एकड़ 2 लाख तक हो रहा है मुनाफा, प्रति एकड़ 25 से 30 हजार रुपए तक का खर्च। गर्मी में तरबूज की मांग को देखते हुए सुनारिया के किसान जिले सिंह ने पिछले साल खेती शुरू की थी। अब की बार 5 एकड़ भूमि को इसकी खेती के लिए फरवरी माह में तैयार किया। प्रति एकड़ में 7 से 8 टन खाद डाली, 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बिजाई की। प्रति एकड़ 30 हजार रूपए का खर्च आया। अब ये फसल लहलहा गई है। बाजार में तरबूज की भारी मांग होने के कारण हाथों हाथ बिक रहा है। इससे करीब 2 लाख रूपए प्रति एकड़ की इनकम हुई है। इस फसल में खासियत ये है कि फल आने के दौरान रोग लगने का उतना खतरा नहीं होता, क्योंकि गर्मी में शत्रु कीट उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए मेहनत व लागत कम हो जाती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जगत बताते हैं कि लू चलने के समय रोग उत्पन्न करने वाले शत्रु कीट गर्म हवा से नष्ट हो जाते हैं। ये थे आज के कृषि समाचार। उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपको लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए, उन्नत रहिए।
0: मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें।
1: www.sdcollegeambala.ac.in

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
3: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
4: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
5: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
4: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
5: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
4: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
5: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स, सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
4: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
5: www.sdcollegeambala.ac.in।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण। सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो बिदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
3: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
2: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
3: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
2: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
3: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
2: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
3: www.sdcollegeambala.ac.in।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अम्बाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेरी निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिल तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
1: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
0: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
1: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
0: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
1: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
0: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
1: www.sdcollegeambala.ac.in।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
4: पर। वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।

0: ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: सही रास्ता सही चुनाव, सनातन धर्म कॉलेज अंबाला कैंट, 1916 से शिक्षा और संस्कार का विश्वास।
2: ग्रेड नेक A++, CGPA 3.72।
1: कोर्सेज 22+ UG, PG और प्रोफेशनल NEP प्रोग्राम्स।
2: फैसिलिटीज स्मार्ट ग्रीन कैंपस, वाईफाई, मॉडर्न लैब्स, स्कॉलरशिप्स और 100% इंटर्नशिप सपोर्ट।
1: रिकॉर्ड 47 साल से यूथ फेस्टिवल विजेता और शानदार प्लेसमेंट्स रेपुटेड MNCs में।
2: गर्व 700+ डिस्टिंक्शंस, 45+ स्पोर्ट्स मेडल्स और बेस्ट NCC NSS यूनिट्स। सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी।
1: आधुनिक शिक्षा के लिए आज ही रजिस्टर करें
2: www.sdcollegeambala.ac.in।
3: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7। इसमें हम आपको पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनाते हैं। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने।
4: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। दोस्तों, शब्दों से भरी दुनिया में कुछ आवाजें दिलों को छू जाती है और कुछ सुरों का जादू हमें यादों के सफर पर ले जाता है। आज का ये सफर उन्हीं सुरों के संग होगा जो कभी मुस्कान बनेंगे तो कभी आंखों में नमी लाएंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरने, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और पेश कर रही हूँ आज का कार्यक्रम सरगम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गीतों का सिलसिला। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं प्रेम रोग के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, जिसके बोल लिखे हैं आमिर कजालबश ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत पैरे।

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर का गाना, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपकी नजर पेश है फिल्म जुदाई से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गाया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म है सुहाग।

लीजिए आप सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, और जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

सभी श्रोताओं के लिए अगला गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने और आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने, और फिल्म फर्ज का गाना है ये।

0: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए हैं। हम कुछ क्षणों के लिए लाइव हो रहे हैं और आपसे उनको रूबरू कराएंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि रेडियो वितस्ता अम्बाला के सभी श्रोताओं की जुबान है। ये वॉइस फॉर वॉइसलेस है। हम कोशिश करते हैं कि आपको वो बात बताएं जिससे आपको सरोकार है। और आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे खास जो हमारे मार्गदर्शक भी है, हमारे दोस्त भी है और हमारे रेडियो के साथी भी है, आपसे रूबरू करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। और हमारे साथ इस समय है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो निदेशक है हरियाणा ग्रामीण संस्थान करनाल के। और ये हरियाणा सरकार के ऐसे प्रतिनिधि है जो हर समय अपने लोगों के लिए, हरियाणा के हर वासी के लिए तत्पर रहते हैं। साथ में आपको ये जानकारी भी दूं, आपने कई दिनों से रेडियो वितस्ता एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ से कार्यक्रम सुना है राम राम हरियाणा। वो राम राम हरियाणा कार्यक्रम के जो सूत्रधार है वो है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान। उस विषय में भी बात करेंगे। थोड़े से समय के लिए हम आपके साथ रूबरू हैं, बराही रास्त यानी लाइव है हम आपसे। और सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, और मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय भी दें ताकि हमारे अम्बाला के श्रोता और जहां तक हमारी आवाज जाती है वो आपको और अच्छे से जाने।
1: देखिए भरत जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके सभी सुनने वालों को प्रणाम कहता हूं, नमस्ते कहता हूं और राम राम कहता हूं। राम राम हरियाणा हम सप्ताह में 5 दिन आपके साथ मिलकर कहते ही हैं एक नए कार्यक्रम के माध्यम से। आपने मेरा परिचय संक्षेप में दे ही दिया है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हूं और हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा सरकार का एक संस्थान है, नीलोखेड़ी में वो स्थित है। राज्यभर के पंचायती राज के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आपके चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो पंचायत समिति के सदस्य हों या फिर जिला परिषदों के सदस्य और पदाधिकारी हों या फिर गांव और उसके विकास से जुड़े जो अधिकारी और कर्मचारी हैं अलग अलग विभागों के, उन सबको सतत प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना कि वो अपने कामकाज को कैसे बेहतर करें, कैसे करें और फिर उसको कैसे बेहतर करें, नई कोई योजना आ जाए तो उसको कैसे लागू करना है, इस सब का हम उनको सतत प्रशिक्षण देते हैं नीलोखेड़ी के संस्थान के माध्यम से। गतिविधियां हमारी प्रदेश भर में चलती हैं। जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो बहुत बार लोग हमारे परिसर में आते हैं नीलोखेड़ी, और ऐसा ही नहीं है कि सबको वहां आना होता है, बहुत बार अन्य स्थानों पर माने जिला केंद्रों पर या खंड स्तर पर नीचे जाकर भी हम अपने प्रशिक्षकों के माध्यम से, अपने शिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं। ये तो मेरा परिचय हुआ मेरे नए काम का जो आजकल मैं कर रहा हूं, ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण देने का। मूलतः मेरा जो गांव कह लीजिए, जन्मस्थान कहिए, वो करनाल जिले में ही है, गोंदर गांव है, करनाल जिले का तीसरा बड़ा गांव, लगभग 25,000 की आबादी का गांव है। वहां पर मेरा जन्म हुआ, शिक्षण, स्कूली शिक्षा गांव में और फिर कुरुक्षेत्र के गीता निकेतन में हुई, और वहीं से मैंने फिर स्नातक किया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, वहां के यूनिवर्सिटी कॉलेज से। काम करते करते, पढ़ते पढ़ते मैं पत्रकारिता में चला गया
0: जी।
1: और पत्रकारिता के करीब एक दशक के बाद फिर मैंने पत्रकारिता का अध्यापन शुरू किया, तो मैं अनेक वर्षों से चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में जो है वहां पर पत्रकारिता का शिक्षक हूं
0: जी,
1: पत्रकारिता का प्रोफेसर आप मुझे कह सकते हैं
0: जी।
1: और वहां पत्रकारिता का जो विभाग है उसका मैं कई वर्ष तक अध्यक्ष भी रहा
0: जी।
1: वहां रहते हुए प्रतिनियुक्ति पर इन दिनों हरियाणा सरकार के इस संस्थान में हूं। इसी अवधि में ग्रामीण विकास संस्थान और पत्रकारिता का अध्यापन विश्वविद्यालय में एक विभाग के अध्यक्ष के रूप में, इसके बीच में एक और पड़ाव आया मेरे जीवन में, जब मुझे हरियाणा की सरकार ने, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा ग्रंथ अकादमी
0: जी
1: एक संस्थान सरकार का हुआ करता था जिसका काम हिंदी में हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, यहाँ की लोक संगीत और हरियाणा से जुड़े विभिन्न विषयों पर और इसके साथ साथ उच्च शिक्षा के अलग अलग विषयों पर हिंदी में पुस्तकें प्रकाशित करने का वो काम ग्रंथ अकादमी का हुआ करता है। तो ग्रंथ अकादमी के जो अध्यक्ष होते थे वो तो मुख्यमंत्री पदेन होते हैं, मैं उसके उपाध्यक्ष और निदेशक के रूप में भी काम करता रहा। तो कुल मिलाकर ये मेरी गोंदर से लेकर के पंचकुला होते हुए रोहतक सिरसा होते हुए और इन दिनों नीलोखेड़ी तक की कहानी मैंने आपसे कह दी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी सारी हमें जानकारी दे दी। और मैं चाहूंगा कि आप हमें ये बताएं कि जो हरियाणा ग्रामीण संस्थान है
1: जी,
0: जिसके आप निदेशक हैं, तो ये जो ये जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, आप हर गांवों के बारे में जानकारी भी रखते हैं और गांवों की जो तरक्की है उसके बारे में भी आप नजर रखते हैं, उनको शिक्षित भी करते हैं जैसे आपने कहा, तो किस तरीके से हमारे देश का गांव जो है, खास करके हरियाणा की बात हम करें क्योंकि हम हरियाणा की उस पावन धरती पर है, हरियाणा के गांवों की जो सूरत है वो पिछले सालों में कितनी बदली है, खास करके जब से एक सकारात्मक सोच की सरकार आई है, जो लोगों की हितेशी सरकार आई है, क्योंकि आप सरकार का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो सरकार की बात आप तक पहुंचते और आप ग्रामवासियों तक पहुंचाते हैं, तो हमारे हरियाणा के गांवों में कितना बदलाव आया है।
1: देखिए, गांव को लेकर एक बात, आजादी से पहले या आजादी आई उसके आसपास महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कहते थे कि देश जो है भारत, वो है भारत जी, भारत गांव में बसता है
0: जी।
1: और ये बात जब महात्मा जी कहते थे तब भी सच थी, और आज जब मैं और आप बैठकर यहां बात कर रहे हैं तब भी ये बात सच है। 65% से अधिक आबादी आज भी देश की गांव में रहती है। तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की कल्पना करते हैं या उन्नत भारत की कल्पना करते हैं, तो पहले तो भाई साहब गांव को विकसित होना पड़ेगा
0: जी।
1: ये बात खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब दिल्ली में केंद्र में सरकार बनी, बिल्कुल प्रारंभिक दौर में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़कर कहनी शुरू की। उन्होंने कहा, एक अगर आपको याद हो तो उन्होंने एक उद्घोष दिया था उस शुरुआती दौर में, और वो था ग्रामोदय से भारतोदय
0: जी।
1: भारत का उदय अगर चाहते हैं तो पहले ग्राम का उदय
0: होना चाहिए।
1: तो नई सरकार बनने के बाद विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी कार्यकाल की सरकार चल रही है, इस अवधि में गांव को उठाना, इस पर ध्यान पहले दिन से दिया जा रहा है। वैसे गांव की तरक्की की अगर बात करें और हरियाणा के गांव की तरक्की की ही अगर हम बात करें, तो सिलसिला तो अटल जी के समय में भी शुरू हो गया था
0: जी।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े व्यापक पैमाने पर अच्छी सड़कों से जोड़ने का काम
0: किया,
1: उस दौरान हुआ था
0: जी।
1: लेकिन इस सरकार ने आने के बाद बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ काम किया। आज हमारा गांव लगभग उतना डिजिटाइज्ड है जितना शहर है।
0: मैं
1: ये जब आप सवाल जवाब मैं आपको सवाल करने का अवसर जरूर दूंगा
0: जी,
1: लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं इस चित्र को दो वाक्यों में कि शहर का व्यक्ति नागरिक, शहरी भारतीय, शहरी हरियाणवी बहुत सारी अपनी सुविधाएं वो डिजिटली ऑनलाइन प्राप्त करता है
0: जी।
1: और ये आधुनिकता का पैमाना है
0: जी।
1: तो साहब मेरे गांव का व्यक्ति भी अधिकांश या उतना ही और कुछ मामलों में उससे ज्यादा भी हो सकता है वो डिजिटाइज्ड हो। आपको बहुत सारे शहरी आपके श्रोता हैं, गांव वाले भी हैं
0: जी।
1: गांव का किसान अब हर सीजन में सरकार को ऑनलाइन बताता है, साहब कि मेरे खेत में इतनी सरसों हैं, इतनी मैंने धान उगाई है, इतना मैंने गेहूं बोया है
0: जी।
1: इतनी सब्जी है, फल सब्जी का विक्रेता है, उसको अगर कहीं कोई सब्सिडी चाहिए तो उसका भी डिजिटलीकरण हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि गांव और शहर के विकास के बीच की खाई को पाटने का इस सरकार ने प्रयत्न किया है। आपका प्रश्न,
0: जैसे हम हरियाणा के गांव की बात करते हैं और आप निदेशक है हरियाणा ग्रामीण संस्थान के, मैं आपको ये कहूंगा कि इस समय हम बात कर रहे हैं अंबाला छावनी के सामुदायिक रेडियो FM 90 रेडियो वितस्ता से
1: जी।
0: और मुझे इस बात पर भी बहुत खुशी है कि जो हमारे आसपास के गांव है, जैसे फलेल माजरा है या अकबरपुर है या खुड्डा है या बहुत सारे गांव है जहां हमें भी जाने का मौका मिला, या हमारे जीटी रोड पर गांव लंढा है, तो बहुत सारे गांव में मैं गया हूं और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं वहां पर उन्नति देखता हूं और कई बार शहर से ज्यादा साफ सुथरे सड़कें और अच्छा वातावरण और पेड़ हर साइड लगे हुए हैं, तो गांव तो वाकई बदल रहा है। और आपकी ये जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी को आप भारत सरकार तक कैसे इन्फॉर्म करते हैं, क्या उसके पैमाना है?
1: भारत सरकार जितनी सरकार की योजनाएं हैं हमारी
0: जी,
1: जो मैं डिजिटाइजेशन की बात कर रहा था, एक एक योजना का डिजिटल उसकी निगरानी भी होती है
0: जी।
1: मेरे गांव में ग्राम सभा हुई
0: जी।
1: ग्राम सभा का अर्थ है गांव की संसद
0: जी।
1: गांव का हर मतदाता वो उसका सदस्य है
0: ठीक।
1: जिसको मत देने का अधिकार है वो गांव का अपने आप को सांसद कह सकता है
0: जी।
1: और उसके पास ये हक है कि वो उस संसद की जब बैठक हो उसमें जाए, अपनी आवाज उठाए, ये गली बनाओ, ये सड़क बनाओ, ये तालाब साफ करो, पहले स्कूल की चारदीवारी बनाओ, फिर पुस्तकालय बना लेना, माने ये सारे निर्णय आदर्श स्थिति ये है कि ग्राम सभा में होने चाहिए। पहले ग्राम सभा बड़े पैमाने पर मैं यूं कहूंगा वो कागजों में होती थी
0: जी।
1: सरपंच साहब के यहां 10 आदमी इकट्ठे किए, उन्होंने चाय पी और 10 लोगों ने तो वहां हस्ताक्षर कर दिए, कुछ लोगों के घर जाके घर घर नत्थू के, फत्तू के, पार्वती के, संतोषी के दस्तखत कराए और ग्राम सभा हो गई। तो संसद की बैठक ही नहीं होती थी। अब हमने सुनिश्चित किया है कि गांव की संसद की बैठक भी होगी, उसकी कार्रवाई का डिजिटलीकरण भी होगा और सभासार नाम से एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है साहब, सभासार पे सारी कार्रवाई अपलोड होती है। मेरे गांव में कौन से विकास के काम हो रहे हैं, उन पर कितना खर्च आना प्रस्तावित है और संपन्न हो गया है तो कितना आ गया,
0: सारी
1: है?
0: जानकारी उधर ही दी जाती है,
1: तस्वीर भी है, जियो टैग उसको किया हुआ है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सरपंच ने कागज में तो दिखा दिया कि कमरा बन गया स्कूल में और वो पैसा मिलके सेक्रेटरी के साथ पी गया,
0: ठीक,
1: संभव ही नहीं है।
0: मैं इसके साथ जुड़ा प्रश्न आपको, जितने हमारे अंबाला के श्रोता इस समय सुन रहे हैं, खास करके जो हमारे ग्रामीण एरिया के हैं, तो जितने भी सरपंच या गांव का एक तरीके का प्रधानमंत्री होता है और उसकी संसद वही ग्राम सभा है
1: जी,
0: उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हमारी इस सामुदायिक रेडियो से भी कोशिश है, भारत सरकार की या हरियाणा सरकार की जो भी योजनाएं हैं या जो भी सकारात्मक सोच, सकारात्मक बात है, उन तक पहुंचाएं, वो किस तरीके से अपने गांव को सुंदर, स्वच्छ और देश में नंबर एक गांव बना सकते हैं।
1: संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ सतत विकास के लक्ष्य निर्धारित किए हैं
0: जी।
1: हमने कहा कि इनको लोकलाइज करते हैं
0: जी,
1: गांव की पंचायत की आवश्यकता के अनुसार इनको ढालते हैं
0: जी।
1: हमने उनको ढाल करके गांव को कहा आप इस विषय पर काम करें, इस विषय पर काम करें, इस विषय पर काम करें। फिर हमने कहा कि आप जो ये काम कर रहे हैं हम इसको नापेंगे साहब
0: जी।
1: हमने कह दिया, आपने कर दिया, आपने क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया पता चलना चाहिए ना
0: जी।
1: तो उसके मूल्यांकन का, मापन का एक इंडेक्स बनाया गया
0: जी।
1: जैसे सेंसेक्स होता है, वो बाजार का के उतार चढ़ाव को बताता है, ऐसे ही उसको हमने कहा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स,
0: पाई
1: स्कोर कहते हैं हम उसको
0: जी।
1: तो हमने उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो मूल्यांकन करना शुरू ही किया
0: जी।
1: आप कह रहे हैं कि आपके यहां पानी की, पीने के पानी की सुविधा का की ये स्थिति है क्या, आंकड़े दर्ज करिए ऑनलाइन,
0: और जैसे ही ऑनलाइन दर्ज आंकड़े हुए
1: फिर
0: वो सरकार तक पहुंच गए,
1: सरकार के पास चले गए और आपका स्कोर बन रहा है
0: जी,
1: आपका ग्राफ बन रहा है, आपका एक इंडेक्स बन रहा है। हमने आगे ये कहा कि भाई साहब इस इंडेक्स को खाली पोर्टल पे नहीं रखना, ग्राम पंचायत को मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, जो यहां के सुनने वाले आपके सरपंच होंगे या ग्रामवासी भी होंगे, कि आपका गांव कितना बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, कौन सी मंजिल, कौन सी सीढ़ी चढ़ रहा है, इसको अगर कायदे से आपको देखना है तो जाइए अपनी पंचायत से मांगिए कि भाई हमारा पाई इंडेक्स का है, दिखाइए जरा
0: हम कहां पर
1: स्कोर है, कहां खड़े हैं,
0: हम कहां खड़े हैं।
1: तो एक तो जाकर मांगना ग्राम वालों का हक है, ग्राम सभा में मांग लीजिए, अन्यथा भी मांग लीजिए, उनको देना पड़ेगा।
0: बहुत अच्छी बात।
1: उससे भी अगली बात है, हमने ये कहा, भारत सरकार ये लगातार कह रही है और इसको हम आने वाले दिनों में और कड़ाई से लागू करेंगे कि साहब इसको आप सार्वजनिक स्थान पर आपका लेटेस्ट पाई स्कोर, पाई चार्ट चिपका के रखिए
0: ताकि कोई भी हर पर आ जाए, हर उसको पता चल जाए,
1: हर आते जाते को पता चले स्थिति, बिजली में कहां खड़े हैं, पानी में कहां खड़े हैं, सफाई में कहां खड़े हैं, सेहत में कहां खड़े हैं। तो इस तरह से मैं ये कह रहा हूं कि गांव के विकास की प्रक्रिया का आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ जुड़ाव पैदा करके हम गांव के रहने वाले को ये कतई फीलिंग आने देना नहीं चाहते कि यार वो शहर आगे बढ़ गया, तुम यहीं रह गए। हरियाणा का गांव कैसे आगे बढ़ा, मैं आपको इंटरेस्टिंग एक चीज और बताता हूं।
0: जी प्लीज।
1: समय हमारे पास और आपके पास कम है, किसी और दिन इस पर और चर्चा करेंगे।
0: जी।
1: जब 2014 में हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो शायद एक हाथ की उंगली पर गिनने लायक गांव होंगे, 7,500 के लगभग गांव है हरियाणा में, उनमें से जो ये कह सके साहब मेरे यहां भी अंबाला शहर की तरह 24 घंटे बिजली आती है।
0: जी।
1: हमारे अंबाला में बिजली 24 घंटे थी, पंचकुला में बिजली 24 घंटे थी, शायद करनाल में भी 24 घंटे थी, कटवट को छोड़ दें तो,
0: पर गांव में शायद नहीं थी।
1: गांव में थी ही नहीं साहब। अच्छा। गांव में बिजली कहीं 6 घंटे आती थी, कहीं 8 घंटे आती होगी, कोई कोई गांव होंगे जहां 12-14 घंटे आती होगी। मनोहर जी ने आके एक ऐलान किया कि हमारा गांव जगमग गांव करके की योजना हम चलाएंगे, सारे गांवों की बिजली की जो केबल्स हैं, तारें पुरानी हो गई थी, पता नहीं कितने वर्षों से बदली नहीं थी, हम सारी बदल डालेंगे। वो एक एडवर्टीजमेंट नहीं आता, सारे घर के बदल डालूंगा मैं, कंपनी का नाम नहीं लूंगा। तो हमने तय किया कि हम सारे गांव की केबल्स बदल डालेंगे
0: ताकि लाइन लॉस भी कम हो,
1: और इस बहाने से चोरी रुके,
0: चोरी भी रुके और ये भी कोई दिक्कत नहीं आगी, हवा आ गई, पोल गिर गया,
1: हाँ फिर कट लगेगा।
0: जी,
1: चोरी भी एक बड़ा मसला था।
0: जी,
1: लाइन लॉसेस में एक बड़ा हिस्सा चोरी का था।
0: जी,
1: टांकी कुंडी अलग अलग नाम से उसको कहते होंगे, वो लगाते थे लोग। तो हमने नई केबल्स, नए ट्रांसफॉर्मर्स लगाने शुरू किए और अब हम 6,000 से अधिक गांवों में, लगभग 80% गांवों में अब तक हम वो सारी केबल्स बदल चुके हैं, नए ट्रांसफॉर्मर लगा चुके हैं। और जहां हमने ये लक्ष्य अर्जित कर लिया, जिस गांव ने सहयोग किया, वहां अब हम, पहले हमने उसको बिजली को 16 घंटे किया, फिर 18 किया, 24 घंटे बिजली वाले अब हरियाणा के लगभग 80% गांव है। यूं लगता था कि ये कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैं पत्रकार रहा हूं, पिछले कई मुख्यमंत्रियों ने ये वादा किया था, बंसीलाल जी ने 90 के दशक में जो हमारे साथ सरकार में होते थे, गठबंधन की सरकार थी, उस समय से कहना शुरू किया था 24 घंटे बिजली देंगे गांवों को, बंसीलाल जी नहीं दे पाए, यानी हम और बंसीलाल जी मिलकर नहीं दे पाए। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी आए, उन्होंने कहा भाई 31 दिसंबर 2004 तक हरियाणा के गांव में एक मिनट का कट नहीं लगने देंगे। वो 6 साल राज करके चले गए, नहीं हुआ साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, मैंने उनसे पत्रकार के नाते पूछा ये 24 घंटे बिजली कब मिलेगी हुड्डा साहब, तो उन्होंने कहा भाई 24 घंटे तो नहीं दे सकते, 20 घंटे दे देंगे लेकिन 3 साल चाहिए, 3.5 साल चाहिए। मैं ये तो प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री से हुई बात के आधार पर मैं कह रहा हूं। 9.5-10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज करके चले गए, 24 घंटे बिजली नहीं मिली। जब हमारे मुख्यमंत्री ने, मनोहर जी ने कहा कि मैं दूंगा, तो मैं साथ खड़ा था। जब शायद उन्होंने पहली बार कहा होगा या दूसरी बार कहा होगा, तो मेरे मन में भी ये आया था ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो शायद मुख्यमंत्री जी की का वादा पूरा नहीं होगा। हमने किया साहब,
0: वो किया
1: बेहतरीन। तो एक बड़ा काम जो गांव में हुआ, ऐसे गांव की जो जोहड़ है, तालाब है, अगर आप हरियाणा के गांव में पहले कभी गए होंगे आसपास के किसी गांव में, आपने लंबे समय से आप यहां हैं अंबाला में, तो हरियाणा के गांव में जो तालाब हैं हमारे, जोहड़ जिनको आमतौर पर कहते हैं, वो बहुत गंदगी का उनकी हालत थी। हमने एक प्राधिकरण बना दिया, तालाब प्राधिकरण, और हमने कहा हरियाणा के हर गांव के हर तालाब का हम बनाएंगे एक, जैसे आपका आधार कार्ड आपकी पहचान है
0: जी,
1: आपकी यूनिक आईडी है,
0: जोहड़ उस गांव की पहचान बनेगी।
1: हमने हर जोहड़ की यूनिक आईडी बना दी।
0: अच्छा, ताकि उसको संरक्षित,
1: तो चले
0: संरक्षित भी किया जाए।
1: लोग कब्जा कर गए थे साहब, पूरे के पूरा कागज में जोहड़ है 15 एकड़ का, और भारत जी जमीन पे गए तो पता चला इतनी सी जो है कुछ मीटर चौड़ा कुछ मीटर लंबा वो जोहड़ बचा हुआ, आड़ा तिरछा था, बाकी सब दबा लिया। तो हमने हरियाणा के एक एक तालाब जोहड़ पोखर का सैटेलाइट से चित्रण कर लिया साहब, हर एक की एक आईडी है, किसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कितनी जमीन है हमको मालूम है। हमने 2000 के लगभग तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम कर लिया है, 20-25,000 के लगभग, यह आंकड़ा 25 से प्लस हो गया टोटल का। तो उसमें से हमने एक हिस्से को बेहतरीन साफ सुथरा पटरी वाला हरा भरा जोहड़ बना दिया,
2: और हम एक एक हरियाणा के तालाब को सुंदर बनाने जा रहे हैं। तो ये बड़ा परिवर्तन है।
0: जी जी सर, इस विषय पर तो अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारा समय निकलेगा।
2: निश्चय
0: आज हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, वो ये, आप पत्रकार रहे हैं, आप युवा भी हैं, हम तो युवा ही
1: मैं युवा ही रहना चाहता हूँ, जब तक रहूं युवा रहूं।
0: और उसके बाद आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन में निभा रहे हैं, तो आप ये सारे काम करने के बाद आप रेडियो से कैसे जुड़े और रेडियो का इतिहास आपके साथ कैसे जुड़ा है और आपने हरियाणा को रेडियो के माध्यम से सबसे पहले क्या दिया?
1: देखिए, मैं रेडियो से तो बिल्कुल अपने पत्रकारीय करियर के शुरुआत से भी पहले जुड़ गया।
0: ठीक है।
1: मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, स्नातक हुआ, और जब मैं वहां पढ़ रहा था तो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी के एक निदेशक थे उन दिनों में, श्रीवर्धन कपिल साहब, अब उनका स्वर्गवास हो गया
0: जी।
1: तो जो कपिल जी जो हैं
0: जी,
1: बहुत अच्छे कवि थे और बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर तो थे ही
0: जी।
1: आवाज बहुत बढ़िया थी, संगीत में उन्होंने वोकल में भी और इंस्ट्रूमेंटल में भी एमए किया था। इससे पहले वो फिजिक्स के पीएचडी थे।
0: अच्छा।
1: तो वो वर्सेटाइल सी पर्सनालिटी थे। तो कपिल साहब एक यूनिवर्सिटी के इंटरजोनल यूथ फेस्टिवल में डिबेट कंपटीशन में और पोएटिक रेसिटेशन में वो आए हुए थे जज बन के, और मैं डिबेट्स वगैरह में युद्धरत रहता था और जीत जूत के आता था खूब। मैं अपनी यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, लगातार 3 साल बेस्ट डिबेटर रहा इंटरजोनल यूथ फेस्टिवल में। तो एक कार्यक्रम में जब वो आए हुए थे कपिल जी, उन्होंने मेरी कविता भी सुनी और मुझे भाषण देते हुए भी सुना। तो उन्होंने कहा, वीरेंद्र जब तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाए ना, आकाशवाणी आना।
0: ठीक।
1: और मैंने पकड़ ली वही बात, जिस दिन मेरा लास्ट पेपर था, अभी तो रिजल्ट आना तो बाद की बात थी, मैं आकाशवाणी का दरवाजा घंटी बजा दी। तो एक तरह से जिस दिन मैं आकाशवाणी के दफ्तर में घुसा, कुरुक्षेत्र के एफएम स्टेशन के, उसी दिन से मेरा आकाशवाणी से नाता जुड़ गया। और उन्होंने मुझे, युवाओं के लिए एक कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम में प्रेजेंटर के तौर पे मुझे उन्होंने जोड़ा।
0: तो
1: वहां से मैंने कहता हूं कि जीवन में पहली कमाई
0: रेडियो से आई।
1: उस महीने 1200 रुपए, उस समय में एक प्रोग्राम के 250 रुपए मिलते थे, तो 1200 रुपए की इकट्ठी कमाई आई। तो मैं उड़ा घूमता रहा कई दिन तक उस 1200 रुपए को लेके, चेक आए। तो खैर, तो ऐसे रेडियो से जुड़ा हुआ, वहां पर एक कार्यक्रम चलता था सन्निहित तीरे, उसको रेडियो न्यूज रील कह सकते हैं। तो डॉक्टर सुरेश वर्मा आजकल जामिया में पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं कम्युनिकेशन के, वो उन दिनों वहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने उसमें भी मुझे जोड़ लिया। तो रेडियो से नाता वहाँ से शुरू हुआ, और जब मैं पत्रकारिता में गया और पत्रकारिता का शिक्षक हो गया, तो ये नाता घूम के नए सिरे से जुड़ा। इस बीच में रेडियो के कार्यक्रमों से, आकाशवाणी से मैं जुड़ा रहा, लेकिन नए सिरे से कैसे जुड़ा कि मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गया तो मुझे लगा कुछ नया करना चाहिए मास कम्युनिकेशन में। बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के लिए कोई लैब ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक सी हो। तो मैंने कहा, बाई चांस मैंने कम्युनिटी रेडियो पॉलिसी पढ़ ली उन दिनों में, और मैंने अपने वाइस चांसलर से कहा, साहब हम बनाएंगे एक कम्युनिटी रेडियो,
0: अप्लाई करेंगे।
1: बहुत लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई
0: जी।
1: जब पहले दिन प्रस्ताव भेजा कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बनाना है, तो उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी में रेडियो उरे के काम, अड़के करेंगे। लेकिन चीजें ठीक चली और बहुत तीव्र गति से रेडियो सिरसा नाम से हम हरियाणा को किसी विश्वविद्यालय का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन दे पाए। तो मैं उसका फाउंडर डायरेक्टर था। फिर ये यात्रा आगे बढ़ी तो हमारे मन में एक बात आई, भारत जी, कि भाई ये जितने हमारे देश में नई विधा थी कम्युनिटी रेडियो, और उस समय शायद 150 के लगभग ही स्टेशन थे, तो मैंने कहा ये सब एक साथ क्यों नहीं आ सकते। तो मुझे याद है कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ये विचार औरों के मन में भी आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसको कागज पे सबसे पहले मैंने उतारा, जो सीआरए आई है,
0: कम्युनिटी रेडियो ऑफ एसोसिएशन, जो इस समय हमें सपोर्ट भी करती है,
1: सीआरए आई
0: जी,
1: उसका पहला विचार कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन हो रहा था दिल्ली के विज्ञान भवन में, वहां पर कुछ मित्रों के सामने मैंने रखा, डॉक्टर श्रीधर वगैरह थे, इन लोगों ने सपोर्ट किया। मिनिस्ट्री के भी कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये हो
0: क्योंकि यूनियन क्यों बने, सवाल पूछने का
1: सवाल करने
0: को मौका नहीं मिलेगा जब यूनियन बनेगी।
1: तो उस सबको हमने एक तरह से मैनेज किया, और उस दिन भोजन से पहले, भोजन पे जब हम सब जा रहे थे, एक रजिस्टर में
2: पहला प्रस्ताव मैंने अपने हाथ से लिखा कि हम हरियाणा, हम देश भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन एक मंच पर आकर कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके गठन का संकल्प लेते हैं। मैं उसका फिर फाउंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहा, तो रेडियो से नाता इस तरह से रहा साहब। और उसी क्रम में फिर रेडियो गोंदर में जो हमारा रेडियो ग्रामोदय रेडियो है वो हमने अपने गांव में भी शुरू किया। और अगला चरण बता के फिर मैं इस बात को विराम दूंगा कि हमने रेडियो ग्रामोदय बनाया, फिर कई मित्रों को प्रेरित किया रेडियो बनाइए। पिहोवा का वेद जी का रेडियो है, तो उनको प्रेरित किया। सिरसा में हमारे मित्र थे डॉक्टर सिहाग, उनका वो अब नहीं रहे दुनिया में, उनको प्रेरित किया आप भी बनाइए। ऐसे अनेक मित्रों को भी मैंने
0: पुश किया,
2: आपने सही शब्द वो जो मेरी जबान पे आ रहा था वही पकड़ के निकाल लिया आपने। तो वो क्रम, रेडियो को बढ़ाना, रेडियो के माध्यम से लोगों की आवाज को आगे ले जाने का प्रयास करना, जो वॉइस ऑफ द वॉइसलेस हम कम्युनिटी रेडियो के लिए कहते हैं, वो मुझे लगता है वो मेरे मन का विषय हो गया है। और अब हम बहुत जल्द, हमने सैद्धांतिक स्वीकृति ले ली है सरकार से, हम हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का भी अपना एक सामुदायिक रेडियो बनाएंगे। इन प्रिंसिपल उसका अप्रूवल हो गया है।
0: सभी श्रोताओं को मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस समय हमारे देश में 500 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो है और उनकी एक एसोसिएशन है जिसको कम्युनिटी रेडियो आप एसोसिएशन कहते हैं, सीआरए, जिसके फाउंडर डायरेक्टर भी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी है। और आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारे लिए एक लाइफ लाइन है सीआरए सभी सामुदायिक रेडियोज के लिए। मैं, जितने भी हमारे ग्रामीण श्रोता है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बोली में उन्हें ये बताएं कि जो राम राम हरियाणा हमने प्रोग्राम शुरू किया, जो अब शुक्रवार से सोमवार से शुक्रवार तक 4 से 5 बजे तक चलाते हैं संक्षिप्त में, क्योंकि हमारे पास समय कम है, संक्षिप्त में बट उनकी जुबान में, क्योंकि मैं हरियाणवी प्रॉपर नहीं बोल सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इस सामुदायिक रेडियो से आप अपनी भाषा में उन्हें संबोधित करें और उन्हें प्रेरित करें कि वो आए बात करें। और उसके बाद मैं आखिरी प्रश्न आपसे करूंगा, क्योंकि हमारे पास अगले 5 मिनट है।
1: भरत जी, जहां तक हरियाणवी का सवाल है, जो हरियाणवी आप बोलते हो ना कश्मीरी एक्सेंट वाली, वो भी हरियाणवी है। पलवल में जो हरियाणवी बोली जाती है वो ब्रज से प्रभावित है, जो सिरसा में बोली जाती है वो राजस्थान की बागड़ी से प्रभावित है। तो हरियाणवी तो हर जिले की अपनी हरियाणवी है। मैं करनाल का रहने वाला हूं, तो मारी हरियाणवी ओर डाड़की है। और आज हम आए हुए थे नारायणगढ़ में महाराणा प्रताप की जयंती के कार्यक्रम में, और वहां मुख्यमंत्री नायब सिंह जी आए थे, तो उनकी अपनी हरियाणवी है। और इस जिले में बहुत सारी रिश्तेदारियां भी हैं, जो वो रिश्तेदार आते हैं वो और तरह से बोलते हैं, कहा भाई क्या कहां जा रहे हो तुम, तो ये हमारे यहाँ कुछ और तरह से बोला। मेरे गांव में कोई पूछेगा कहां जा रहे हो आप, तो अंबाड़ा वाला तो पूछे कहां जा रहे हो भाई तुम, और मेरे गांव वाले कहेंगे किंग जावे।
0: अच्छा,
1: तो गोंदर की हरियाणवी और अंबाड़ा की हरियाणवी, शजादपुर और साहे की हरियाणवी में भी फर्क है।
0: मैं कहता हूँ कि जो आप मेरे श्रोताओं, हमारे श्रोताओं को इस समय
1: भाई
0: संबोधित
1: अंबाड़े, अंबाड़े वाले सारे भाइयों ते मैं तो यूं कहना रहा हूं आज रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में, कि हम हरियाणा के सारे स्टेशन है ना जुड़से कम्युनिटी रेडियो के जितने भी स्टेशन है, हमारी कोशिश है कि ये सारे स्टेशन रोज, हफ्ते में 5 दिन, रोज तो नहीं, हफ्ते में 5 दिन ये इकट्ठे हो जाएं, न्यारी न्यारी डपली बजाने के बजाय 1 घंटा ये सारी डपली ढोल अपने जो भी हैं तबला और हारमोनियम सारी इकट्ठी बाजे मारी। तो हमने उसी काम खातर एक नवा प्रोग्राम शुरू कराया और उस प्रोग्राम का नाम है राम राम हरियाणा। राम राम हरियाणा में हम इन सारे स्टेशनों ने इकट्ठे लिया वहां, इंटरनेट की मदद लेकर इकट्ठे होकर फिर हम आपस में भी बतलावें, और खाली आपस में नहीं बतलाते, यो प्रोग्राम है इसमें हम गामा के विकास की बात करें खासतौर पर, भाई कित का सरपंच के कर रहा है, कित का जिला परिषद का मेंबर के कर रहा है, सरकार की नवी योजना के आ गई के नहीं आ गई, इतनी बात भी नहीं करते, इससे भी आगे जाऊं मैं भारत सोपोरी जी से भी हम हरियाणवी बुलवाते हैं। और उसमें हम करा के हैं कि भाई फोन की लाइन खुली रहे, आपके जी में आपके मन में कोई सवाल पैदा हो रहा है, भाई यो मन ने इस फलानी स्कीम का फायदा नहीं मिला, मेरा तो यो काम अटक रहा है, मारी तो गली की दिक्कत है, मारी तो जोड़ की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, किसी दफ्तर की कोई समस्या है, साज ली भी है, कभी कभी कल्ले की भी हो सके आदमी की। तो हमने यो राम राम हरियाणा प्रोग्राम जो शुरू कराया है इस काम खातर शुरू कराया कि भाई फोन करो हमारे स्टूडियो में, हमारा जो रेडियो का भाईचारा है, सारे रेडियो के जो हमारे प्रतिनिधि हैं ये सारे आपको बैठे मिलेंगे रोज, और उस प्रोग्राम में आप फोन पे अपना दुख दर्द समस्या वो सुना दोगे, और हमारी कोशिश यह होगी फिर कि भाई उसका समाधान हो जाए किसी ढाल।
2: तो यो है राम राम हरियाणा का मोटा मोटा सा
0: नंबर। नंबर में एक बार फिर बताना चाहूंगा, नंबर है बहुत ही सरल और हर व्यक्ति इसको याद कर सकता है, 88-16-904-904। आप किसी भी सोमवार से शुक्रवार के दिन 4 से 5 बजे इस नंबर को डायल कीजिए और अपनी दिल की बात हमसे कहिए और हमें बहुत खुशी होगी। 88-16-904-904। आखिर में
1: मैं इसमें एक वाक्य जोड़ दूं आपकी बात में, 88-16-904-904 भाई याद करना तो आसान है ही, मैं तो न्यू कह रहा हूं याद क्या करो दमिस ने, इसने अपने फोन में सेव कर लो, राम राम हरियाणा लिख लो और मौका लागते ही 4 से 5 एक बे तो घंटी मार लिया करो सुख दुख की, अपने गांव की भी बता दो और मारी भी पूछ लो। जी बारी जी,
0: आखिर में एक सवाल, आप इस समय पहली बार हमारे पास इस सामुदायिक रेडियो के स्टूडियो में आए हैं, एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, आपको यहाँ क्या कैसा लगा और यहाँ आप क्या यादें लेके जाएंगे और हमें किस तरीके से और प्रेरित करेंगे?
1: देखिए भारत जी, आपके स्टूडियो में आके जो सकारात्मक वाइब्रेशंस में महसूस कर पा रहा हूँ वो आपके व्यक्तित्व में भी हम लोग देखते महसूस करते हैं। कम्युनिटी रेडियो क्योंकि कोई दुकान नहीं है
0: जी,
1: कम्युनिटी रेडियो क्योंकि कोई कारोबार नहीं है
0: जी,
1: तो कम्युनिटी रेडियो को चलाएगा वो जिसके भीतर समाज को कुछ देने का जज्बा होगा और रेडियो से और आवाज की दुनिया से मोहब्बत करता होगा, और मोहब्बत में कारोबार नहीं होता। वो एक साहब कहते तो मैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन मोहब्बत की दुकान होती नहीं, तो मोहब्बत की जो दुकान है वो क्योंकि होती नहीं, रेडियो लोगों से मोहब्बत का, समाज से मोहब्बत का, समाज को कुछ देने का आवाज के जरिए एक माध्यम है, इसे वही चलाएगा जिसके भीतर जुनून होगा। और कभी कभी मैं उसको सनक भी कहता हूं
0: जी,
1: सनक थोड़ा नकारात्मक शब्द है, तो यहां आकर निश्चित तौर पर यह एहसास और आभास हुआ कि कोई जिद्दी व्यक्ति है, उसका नाम भारत सोपोरी है, उनकी अर्धांगिनी को भी उन्होंने उस काम में शामिल कर लिया है और वो तमाम चुनौतियों, बाधाओं और अंग्रेजी में कहते हैं रोड ब्लॉक्स के बावजूद वो अपने काम में लगे हैं। आप इसी ऊर्जा के साथ इस काम में लगे रहे, हम सब मिलकर हरियाणा में रेडियो की दुनिया को, विशेषकर कम्युनिटी रेडियो की दुनिया को और बेहतर बनाएंगे। और मेरा जो सपना है, मेरी जो इच्छा है, मैं तो ये चाहता हूं साहब कि अंबाला में ये स्थिति आनी चाहिए, आज आ जाए, 6 महीने में आ जाए या साल भर में आ जाए, कि अंबाला में अगर किसी को अपने उलझे हुए सवाल का रास्ता निकालना है तो वो कहीं और जाने से पहले, वो विज साहब को परेशान करने से भी पहले एक बार वितस्ता आ जाए और भारत जी उसकी आवाज बने, रेडियो वितस्ता उसकी आवाज बने। बहुत आभार, आपने मुझे आज आपके, आपकी तपस्थली, मैं इसको कहूंगा आपका साधना स्थल है, उसी भाव से आप काम करते हैं, आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो संपत्ति है रेडियो की, संपत्ति साहब ये कंसोल नहीं है, वो ट्रांसमीटर भी नहीं है, ये स्टूडियो भी नहीं है, रेडियो की, कम्युनिटी रेडियो की संपत्ति वो हमारे श्रोता
0: है
1: जी। और रेडियो भी उन्हीं की संपत्ति है
0: जी।
1: सिद्धांत रूप में रेडियो की ओनरशिप आपकी और मेरी नहीं है
0: जी।
1: हमारा रेडियो हमारे समुदाय का है, अंबाला के लोगों का है, तो आपने मुझे अंबाला के लोगों से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। वैसे आप हर रोज कर ही रहे हैं आजकल राम राम हरियाणा के माध्यम से, लेकिन प्रत्यक्ष आपके स्टूडियो में बैठ के बतियाना, भारत जी मजा आ गया, आनंद आया।
0: सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और ये जरूर कहता हूँ कि जब जितने भी हमारे अंबाला के श्रोता है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने जो प्यार और स्नेह हमें दिया है उससे हमें हर दिन ऊर्जा मिलती है। और साथ में मेरे सारे श्रोता ये जानते हैं कि रेडियो वितस्ता का जो मूल आधार है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। हमने बहुत कुछ खोया जिंदगी में, सिर्फ ये सोच है कि हम लोगों को क्या दे सकते हैं जब तक ये सांसें चल रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपके जीवन का प्रवाह है, जैसे वितस्ता सदियों से बह रही है वैसे मैं चाहता हूं कि अंबाला के लोग और हरियाणा के लोग और हमारे देश के लोग आगे उन्नति करें, आगे बढ़ें और इसी आवाज के माध्यम से अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अंबाला की वितस्ता में प्रवाह है, उस वितस्ता के आसपास भी अब मौसम खुशगवार होने लगा है, कश्मीर में बेहतरी आ रही है, इस पार और उस पार का कश्मीर एक दिन एक होगा,
0: अखंड मुझे भारत होगा।
1: बिल्कुल, अखंड भारत से पहले कश्मीर को अखंड करेंगे। ये इस सपने के साथ एक बार फिर से आपको प्रणाम करता हूं, आपके श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, रेडियो वितस्ता को प्रणाम करता हूं और आपके माध्यम से उस वितस्ता को
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।

आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब

सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करते थे। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम की तलाश

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

फिल्म कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शमी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शमी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शमी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शमी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शमी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान ली।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवित।

रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से सुनते रहिए रेडियो वितस्ता।

शमशाद बेगम मानती थी कि कलाकार कभी नहीं मरते। अपनी खनकती और लचकती आवाज के साथ शमशाद अमर है। भले ही 23 अप्रैल मंगलवार की रात शमशाद जन्नत नशीं हुई, लेकिन जब भी हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखा जाएगा, 1940 से 1950 के दौर में उनकी आवाज को दर्ज किए बगैर वो अधूरा रहेगा। शमशाद अपनी बेटी के साथ मुंबई में रहती थी और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। शमशाद की बेटी उषा के मुताबिक अपने जमाने की सबसे बेहतरीन गायिका होते हुए भी उन्होंने खुद को ग्लैमर की दुनिया से दूर रखा। उषा की माँ यानी शमशाद कहती थी कि उन्हें उनके गीतों के लिए दुनिया हमेशा याद करेगी। इसमें कोई शक नहीं, कहीं पे निगाहें मेरे पिया के रंगून, कभी आर कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला जैसे गाने हर जमाने में गाए गुनगुनाए गए हैं।

शमशाद ने गीतों से लेकर गजलों और कव्वाली तक गायकी की कोई ऐसी विधा नहीं थी जिसमें उन्होंने फिल्मों में नहीं गाया। शमशाद बेगम का जन्म 14 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक पारंपरिक परिवार में हुआ था। शमशाद के.एल. सहगल की जबरदस्त फैन थी। शमशाद पांचवी कक्षा तक स्कूल में होने वाली प्रार्थनाओं के लिए प्रमुख गायिका थी। 10 साल की उम्र में ही शमशाद शादी के समारोहों और बाकी समारोहों में पारंपरिक और लोक गीत गाने लगी थी।

इसी दौर की बात है, जीनो फोन रिकॉर्ड कंपनी नई आवाजों की तलाश में थी। शमशाद अच्छा गा सकती थी, लेकिन उनके रूढ़िवादी परिवार को संगीत से कोई लगाव नहीं था, और ना ही वे लोग शमशाद के गायिका बनने के लिए राजी थे। सौभाग्य से शमशाद का हौसला बढ़ाने वाले चाचा उनके पिता की इच्छा के खिलाफ उन्हें रिकॉर्ड कंपनी के पास लेकर गए। उनका ऑडिशन मास्टर गुलाम हैदर ने लिया। मजबूरन पिता को अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा और शमशाद को गाने की इजाजत दे दी गई।

शमशाद बुरके में स्टूडियो जाती थी, पार्टी या बाकी समारोह में शरीक नहीं होती थी और तस्वीरें भी नहीं खिंचवाती थी। सन 1934 में उन्होंने गणपत लाल से शादी की। शमशाद के पति फोटोग्राफी के शौकीन थे। 70 के दशक तक भी शमशाद ने तस्वीरें नहीं खिंचवाई। बात चाहे जीनोफोन कंपनी की हो या फिल्मों की, अपने पंजाबी और हिंदी गानों से शमशाद ने लोगों के दिलों में एक अलग ही मुकाम बना लिया था। उन्होंने गुलाम हैदर के निर्देशन में 200 गाने गाए जो सिर्फ रेडियो पर नशर हुए। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर ये गाने रिलीज नहीं किए गए। 30 के दशक के आखिर में उनके दो जाती गाने तेरे पूजन को भगवान और ओम जय जगदीश काफी ज्यादा चर्चित हुए।

हिंदी फिल्मों में गायन के आगाज से पहले शमशाद ने दल सुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में भी गाने गाए। सन 2009 में शमशाद को पद्म भूषण एजाज से नवाजा गया। शमशाद की जादुई आवाज एक बार ही जन्म लेती है, बार बार नहीं। हिंदी सिनेमा की सबसे मीठी और सुरीली आवाज, सबसे मशहूर आवाजों में से एक आवाज अब खामोश हो गई है। शमशाद खुदा का खौफ रखने वाली और नेक ख्याल की थी, सबकी मदद करने वाली और सबसे मिलजुल कर रहने वाली।

आज के प्रसारण अब यहीं पर समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, अब इजाजत का वक्त आ गया है। आज के इस प्यारे साथ के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। हर रात अपने दामन में सुकून ले आती है, हर सुबह उम्मीद की नई किरण जगाती है। वक्त थमता नहीं, बस यादें दे जाता है। जिंदगी हर दिन नई राह दिखाता है। हम फिर मिलेंगे कल सुबह ठीक 5:57 पर। तब तक के लिए अपनों का और अपना ख्याल रखिए, नए उत्साह और नए सुरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।